ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि यानी 27 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: सुन रहे हैं प्रतीक्षा समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों

0: को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का कथन है, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

सबसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 232। संगीत सरिता में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंटारा। आज सुनिएगा 10वीं कड़ी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे की, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा संगीतकार राहुल देव बर्मन पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत होगी गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है उन दिनों की बात है, लेखक और वचन स्वर अरुण शेखर का।

दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो। मैटिनी शो के अंतर्गत चित्र भारती प्रसारित की जाएगी। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नखमे। 3 बजे मनचाही की, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक कटीला रास्ता, इसका पहला भाग। मूल तमिल लेखक नित्यमूर्ति, हिंदी अनुवादक ए शौर्य राजन, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज शाम 4 बजे। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत वायलिन का विहंगम संसार, 10वीं कड़ी। जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनवाई जाएगी शाम 7 बजे। 7:45 पर जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा,

बच्चन अमरकांत दुबे का प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई की। आज बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9 बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार आर डी बर्मन पर केंद्रित, 10 बजे छाया गीत, 10 बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात, 11 बजे चित्रपट संगीत और मैटिनी शो।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। छह बजकर 55 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7 बजकर 5 मिनट पर समय रहेगा हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग का। सात बजकर 40 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 8 बजकर 15 मिनट पर विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

9:20 पर समय रहेगा विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार का। 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

ग्यारह बजे आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग, बारह बजे कार्यक्रम रहेगा यादों की महफिल, 1:05 पर आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी की चंडीगढ़ केंद्र से।

2 बजे समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार का, जो प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम गीत गुंजन।

दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 5 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। शाम 6 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और

6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। प्रभु वंदना पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 पर।

6:30 पर सुनेंगे आप युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा उमंग, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा युवाओं को जमीन से उठाकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे पहुंचाया जाए। 7 बजे कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कपास की फसल की देखभाल और कीट प्रबंधन। 7:30 पर आप सुनेंगे म्हारे गांव। म्हारे गांव में आज विषय रहेगा मानसून से पहले ग्रामीण इलाकों में की जा रही तैयारियां।

का 45 मिनट पर समय रहेगा। राष्ट्रीय हिंदी समाचार होगा जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 9 बजे सुनेंगे आप विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम और रात 10 बजे सुनेंगे आप हेलो हिसार का पुनर्प्रसारण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:55 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

0: सामाजिक स्थिरताये आर्थिक हिताय यूनाम देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सह आध्यात्मिक नेत्रीन यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मंचे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहितवान्। श्री शाह नवदिल्ल्यां मादक द्रव्य विषयक संयोजन केन्द्रस्य दशम शीर्ष स्तरीय सभां संबोधयन् एवं अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वीयोत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट

की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग के कलाकार हैं प्रेम द्याति कार्यक्रम की शुरुआत में 11 में।

Ariel!

सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के एसआर केंद्र से। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। हरियाणवी लोक रंग हर रोज सुबह 7:10 पर प्रसारित करा जाए। आज के लोक रंग के कलाकार हैं प्रेम द्याती,

ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के थे हरियाणवी गीत संगीत। इसी के साथ थे आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बण भैया ने राम राम।

0: सीने जगत की प्रतिभाओं को आकाशवाणी हिसार का सलाम। सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे।
1: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।
0: आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम सुनिए कहीं भी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर।
2: दोस्तों, कहानियां हमारी जिंदगी

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं।

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। सुनिए प्रत्येक रविवार और वीरवार रात्रि 8 बजे। अपनी फरमाइशें भेजिए 09729253।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will you be remembered as a great scientist, said La Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। 7:40 हो चुके हैं और अब शुरू करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

नमस्कार, शुभ प्रभात। नई सुबह, नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की सुबह को हम बनाएंगे और भी खास, और थोड़ी सी प्रेरणा और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। आज हिसार और उसके आसपास तेज़ धूप व मौसम बेहद ही गर्म रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम तापमान 28 से 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन के समय चिलचिलाती धूप आपको परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और बेजुबान पशु पक्षियों का भी सहारा बनें और उनके लिए पानी की उचित व्यवस्था करें।

दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि यानी 27 जून सन 2026 है। आज सूर्योदय प्रातः 5:25 पर हुआ था और सूर्यास्त शाम को 7:23 पर होगा।

दोस्तों, सुबह की पहली सोच पूरे दिन की दिशा तय करती है। तो आइए आज का दिन इस छोटे से विचार के साथ शुरू करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती।

लेकिन हर सुबह उसे करीब जरूर लाती है। इसलिए मेहनत करना मत छोड़िए। ईमानदारी से की गई मेहनत आपको अपने सपनों के करीब जरूर लाती है, आपको सफल बनाएंगी।

दोस्तों राम, अब चलिए अब करते हैं रामचरितमानस का वाचन। फिरत विपिन नरिप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ ससि ही ग्रसि राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक चोर को देखा, मानो चंद्रमा को ग्रस्त कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है, और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पेवर अधिकाई। घुरु घुरात अहे आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल था और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था।

दोस्तों, आप जानते हैं आज का प्रेरक प्रसंग। एक बार एक संत नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। पास ही कुछ लोग लकड़ियां काट रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति रोज आकर संत का अपमान करता, पत्थर फेंकता और कटु वचन कहता। एक दिन संत ने किसी ने संत से पूछा, महाराज, वह आपको रोज दुख देता है, फिर भी आप उससे कुछ नहीं कहते। संत मुस्कुराए और पास खड़े चंदन के वृक्ष की ओर इशारा करके बोले, देखो, इसे कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, फिर भी यह सुगंध ही देता है। उसी समय वही व्यक्ति फिर अपशब्द बोलने लगा। संत ने आंखें खोली और शांति से कहा, वत्स, तू मुझे जो दे रहा है मैं वही लौटा रहा हूँ, शांति। उस व्यक्ति का हाथ कांप गया। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने जहर दिया और आपने अमृत लौटा दिया। संत ने कहा, बेटा, संत वही है जो संसार की कड़वाहट को भी प्रेम में बदल दे। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जो अपमान में भी करुणा रखे, जो क्रोध में भी शांति चुने, वही सच्चा संत होता है। इसलिए अपने शब्दों पर अपना उचित विराम रखे। और वो कहते हैं ना कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकले हुए कटु वचन कभी वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले अच्छे शब्दों का चयन करें ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुप्रभात कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद 8:15 पर सुनेगा विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा,

0: संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगिनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फतार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इजरायल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे

0: शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ दो दर्शन होगा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3,000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार लगातार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म, लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों

0: के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद, स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

माँ अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

ज्यादातर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नजर में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

आइए सुनिए चित्रलोक। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सलाम कर रहे हैं हम आरडी बर्मन को। वो संगीतकार जिसने हिंदी फिल्म संगीत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।

ये उन गानों की झलक है जो पंचम ने खुद गाए। ऐसे गानों का अपना ही एक पैशन है।

फुकार फिल्म का गीत आपने सुना गुलशन बाबरा की भूल थे। और अब एक बार फिर गुलशन बाबरा की भूल, फिल्म का नाम सनम तेरी कसम।

सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके बीच हर रोज सुबह 7 बजे।

0: सुबह 7:30 बजे हम है राही प्यार के,
1: हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज, सुबह 8:30 पर चित्रलोक। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक बेटी की यादों में उसके पिता
5: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
4: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
5: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
4: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
6: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
4: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। पहले यादों की वादियों में संग संग दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग, ऐसे गाने जो चुरा ले आपका दिल। दिन में 12 बजे यादों की महफिल,
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
1: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की

ने बनाई, उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया, और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई है? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक

0: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी धुन चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुने पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।
1: तेरा चकराए

0: वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपनों में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना,
1: तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से।

0: एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे,

मुदासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव

बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर.डी. बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सावंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत

यही गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के एक बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: याद नहीं क्या तुमको, अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

जब सूरजमल ने हिसार बार काउंसिल ज्वाइन किया था तो उनका ये समूह बड़ा मिलनसार था, और अपने उन्हीं दिनों को याद करते हुए एक बार चौधरी सूरजमल ने कहा भी था कि जब मैं बार काउंसिल में शामिल हुआ तो निश्चित रूप से

अपने लगभग 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में सूरजमल ने सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर विभिन्न क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़कर इस तरीके कामों के माध्यम से अपने प्रांत के लोगों की काफी सेवा की। सूरजमल द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियों में से एक भरतपुर राज्य के प्रधानमंत्री का पद था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने महाराजा बृजेंद्र सिंह को राज्य का भारत संघ में विलय करने का सुझाव दिया। एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के साथ साथ वे एक समाजसेवी भी थे। 1929 में उन्हें पता चला कि हांसी तहसील के पाली गांव में कुछ लोग इस्लाम धर्म अपना रहे थे। सूरजमल और उनके समाज नेता तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया था। उन्होंने उनके साथ भोजन भी किया। सूरजमल अक्सर गरीब और निचले तबके के आर्थिक मदद देकर उनको अपने साथ मिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे लोग जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ना चाहते थे उन्हें वे अपने खर्चे पर आगे बढ़ाते थे और पढ़ाते थे।

सूरजमल अनाथों की मदद के काम में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें 4 नवंबर 1924 को भिवानी अनाथालय का एक पदाधिकारी नियुक्त किया।

एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर सूरजमल शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना चाहते थे। रोहतक जाट स्कूल की मिसाल को देखते हुए, जिसने उस जिले के ग्रामीण लोगों में जागरूकता पैदा की थी, सूरजमल और हिसार जिले के दूसरे नेताओं ने हिसार में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। नवंबर 2024 में हिसार में एक बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि 1 अप्रैल 1925 से एक जाट हाई स्कूल शुरू किया जाएगा। चौधरी लाजपत राय सिसाई की अध्यक्षता में एक प्रबंध कमेटी बनाई गई और सूरजमल को उसका सचिव नियुक्त किया गया। समिति के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर सूरजमल ने जिले के कई तूफानी दौरे किए और 50,000 रुपए जमा कर लिए। बाद में उसी स्कूल की इमारत में दो और शिक्षण केंद्र खोले गए, छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज और छाजूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और सूरजमल को जाट एजुकेशनल सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 8 साल तक पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षा के इन केंद्रों की सेवा। एक किसान परिवार से होने के नाते सूरजमल हमेशा अपने समुदाय के लोगों को आगे बढ़ने की नसीहत देते थे और उनकी मदद करने के लिए उत्सुक रहते थे। जब भी वे किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से मिलते तो हमेशा उनसे पूछते थे, आपके यहाँ किसानों की क्या स्थिति है? उदाहरण के लिए, जब उन्होंने एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से ये सवाल पूछा तो तुरंत उन्हें जवाब मिला, हमारे यहाँ किसान का उतना ही सम्मान किया जाता है जितना आपके समाज में दामाद का किया।

किया जाता है। एक मंत्री के तौर पर फिर उन्होंने सूखी जमीन तक पानी पहुंचाने और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कें बनवाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इस तरह उन्होंने किसानों की बहुत मदद की। वे हमेशा गरीब किसानों से अदालती मुकदमों से बचने और अपने बच्चों को शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते थे।

हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन चौधरी सूरजमल ने लगभग 84 साल की उम्र में 25 जनवरी 1983 को हिसार में अंतिम सांस ली। हरियाणा के ग्रामीण लोग उन्हें हमेशा अपने एक बड़े समर्थक और नेता के तौर पर याद रखते आए हैं और हमेशा रखते

ये थे चौधरी सूरजमल। इसी कार्यक्रम में आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जो हमारे शहर से जुड़ी है और हमारे शहर को अच्छा शहर बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है।

तो श्रोताओं, अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के चौथे पड़ाव पर। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, और अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट रोचक जानकारियों का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बातें जो हमारे देश, धर्म, विज्ञान, इतिहास, महान व्यक्तियों, फिल्म जगत और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं और तथ्यों से आपका परिचय कराती है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की कुछ रोचक जानकारियां। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। इसे तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो श्रोताओं, दूसरी अहम जानकारी हम आपको दे देते हैं कि मानव मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है। यही न्यूरॉन्स हमारी याददाश्त, सोचने, समझने और सीखने की क्षमता का आधार है। तीसरी जानकारी आपको बताते चलें कि

भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र वर्ष 1913 में प्रदर्शित हुई थी और इसे भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म भी माना जाता है। महान हस्तियों को लेकर एक अहम जानकारी आपके लिए हम साझा कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहे। तो श्रोताओं, आगे भी और अहम जानकारियां आपसे साझा करेंगे, जिसमें जिक्र होगा हमारे जिले हिसार से एक ऐसे गांव का जिनके तार पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं।

तो श्रोताओं, अब आपको रोचक जानकारियों के सेगमेंट में कुछ और जानकारियां साझा करने के लिए ले चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहली बार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके तीनों रंग और अशोक चक्र विशेष संदेश और मूल्यों का प्रतीक है। अगली जानकारी में हम आपको बता दें कि हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी विश्व की सबसे बड़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ की पुरातत्विक खोजें भारत प्राचीन इतिहास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली जानकारी में हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बना था। आज का छोटा सा माउस कभी लकड़ी से तैयार किया जाता था। आगे की एक और जानकारी में हम आपको बताते चलें कि पहली हार्ड डिस्क में केवल 5 MB यानी कि 5 MB डेटा ही संग्रहित किया जा सकता था, जबकि आज एक मोबाइल फोन में ही लाखों गुना अधिक डेटा आसानी से रखा जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ रोचक तथ्यों के साथ जानकारियां। उम्मीद है कि जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और इनमें से कुछ बातें आपके लिए नई भी रही होंगी। इसी तरह ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रोचक जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति और सुनते रहिए और जुड़े रहिए FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी केंद्र हिसार से।

श्रोताओं, आज हमारे दो प्रश्न थे। हमारा पहला प्रश्न था, किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रकूट। हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इस सवाल का सही जवाब है हिंद यूनानी। हमारे बहुत से श्रोताओं ने इनके सही जवाब दिए हैं, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया है वो है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला वेदांश कार्तिक। तो लीजिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से ही कुछ पल बाद आप सुनेंगे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम। इंतजार चंद लम्हों का।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

गुलशन में फूल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में फूल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं।

0: जब पहरा में मिलते हैं मैं अब
1: राहुल देवबर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती

0: वैद्य, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बाबरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देवर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रत्न गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देवर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देवर्मन के संगीत से सजाये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देवर्मन ने रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद।

0: रॉकी फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित बी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजी, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये और दूसरा गाना था ये। सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक मुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे

भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी, इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। और उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला जानी मानी सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान। सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। ये है उनका संगीत।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट।

0: मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा है। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स ब्लॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कब लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगूर, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई है और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन-बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाए या ना सुन पाए, मगर यकीन मानिए, हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूर जहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूर जहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सख

0: किसी को अपना बनाए क्यों। मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया सूरज

0: फिल्म ब्रह्मचारी।
1: तो मालूम है और सबको खबर हो गई।
0: सुमन कल्याणपुर ने कई बेमिसाल गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना पत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: छाला पड़ गया वहाँ। वो भी गोल गोल था, ये भी गोल गोल है, वो भी गोल गोल था, ये भी गोल गोल है।
1: नरम नरम गरम गरम है, नरम नरम गरम गरम है, गोल माल गोल माल है, गोल माल गोल माल है। नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे संकराल का।

सवाल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक रणदीप बर्मन को।

रामदेव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनेगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है सुबह 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है, यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता, पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते, कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया, कभी धूप तो कभी उछैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीजें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों की खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हम सफर बन गए और जैसे पति पत्नी, कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले, कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी, उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है वाकई जो चीजें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है, ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में समाचार होंगे, इंतजार कीजिए।

0: एक उच्च स्तरीय बैठक में इन पहलों की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंडरो ने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक में 925 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। वर्तमान में 70 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जबकि 385 अतिरिक्त बसों के लिए खरीद आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष बसों की खरीद उच्च अधिकार क्रय समिति की स्वीकृति के बाद चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इससे स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण की प्रभावी निगरानी के लिए 23 नए केंद्र स्थापित किए जाने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। नए केंद्र 30 सितंबर से पहले पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा के एनसीआर जिलों के सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान ANPR प्रणाली स्थापित की जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत के 775 पेट्रोल पंपों को कवर किया जाएगा, जबकि शेष 2005 पेट्रोल पंपों पर भी निर्धारित समय सीमा से पहले यह प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी। इसके लागू होने के बाद ईंधन भरवाने से पहले वाहन के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तय आयु पूरी कर चुके वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2883 पुराने वाहन जब्त और 2010 वाहन कबाड़ किए जा चुके हैं तथा स्वैच्छिक रूप से वाहनों को हटाने के लिए 6054 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल तीसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2027 का ध्वज प्राप्त किया। उन्हें यह ध्वज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के खेल विभाग के निदेशक सौरभ कुमार अरोड़ा द्वारा सौंपा गया। चीन के शाओक्सिंग में आयोजित दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से यह ध्वज सौरभ कुमार अरोड़ा को सौंपा गया था, जो वहां चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इसे चंडीगढ़ के लिए एक गर्व का क्षण बताया और कहा कि शहर प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप के अगले संस्करण की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह 1989 एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के बाद से चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा और यह चंडीगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। प्रशासक ने बताया कि चैंपियनशिप सेक्टर 7 खेल परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 MHz पर। आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

साथ ही 1000 किलोमीटर शहरी सड़कों का पुनर्विकास भी किया जाएगा। सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत आयोजित

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़ी दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियां, क्योंकि आमतौर पर सखियां तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है, हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तीस रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टेक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती है और कहती है मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस

परवरदिगार की कह रही हूँ कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन की इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते जमाने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और उसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने

के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफर गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं, गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी इबारत कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रस्ते, जहां एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, से लिखे गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ अपना छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे साथी कह रहे हैं कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो संगीत हो राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में एक एक पंक्ति में एक एक गीत में, आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है, जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र यार दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं, आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी, क्या जबली नाम के ऋषि रहते हैं, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजिए, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आप से जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। ये हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफर की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नजर आती है, लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफर की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहां आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफर की पोस्ट नजर आ जाएगी और आप वहां कमेंट के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहां पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मजा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतने बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त जरूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारी एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारी एक और साथी कहते कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के जमाने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयां लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले और मिले तो वो किस्सा क्या है। और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफर। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहती है कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है, और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है। यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कविता मई लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित

रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का कह रहे हैं कि सब कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सबके सब है यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है, लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं, समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती है, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते कि मैंने आपको भी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जहां याराना वो खूबसूरत रिश्ता है, जहां शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे, बताइए किसकी आवाज में है।

0: तो कभी छा,
1: कभी धूप कभी छाव। कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, चित्रगुप्त का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, संगीत किसके आवाज में गीत हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा है। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं, मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है, जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर, नयन जीवंत हो तुम अंतर्मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहां उसमें जो पंक्तियां होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़ी वाला था, वहां के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियां और दोस्त भी, सुरीला सफर के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फोन आना। वही हमारे एक साथी कह रही कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफर की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं मालिक साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियां आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने जमाने की हो, जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फोन उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं, जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में। कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं, हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहां पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला। स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहां मौका मिलता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में, और वहां उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहां पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ।

फिर हम वहां से टैक्सी किराए पर लेकर जुनमाता, सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। वही अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहां पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त से 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई, हमने पुरानी बातें की, तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें, यादें ताजा की होंगी। तो चलिए एक याद ताजा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

पिया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40-45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव के काम से गांव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो भी होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। सोच सोर सुनकर बगल वाले एक कोच

से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये, और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें। और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं

की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार

अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार

अक्सर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नजर में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य

0: अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।

0: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहां से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा

0: इसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौड़ में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियां भेजते हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह

राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: छोड़ दे मेरा साथ
0: फिर न कभी कहना दिल तो।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंचा है गीत। और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार।

की और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।
1: लिखे जो

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से, एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत, जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छहगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपने दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं।

0: नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
1: समय और जमाने के मुताबिक पैतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
0: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
1: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
0: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
1: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब, विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
0: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा, प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
1: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शांत से कीजिए।
0: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं, हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
1: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है, होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
0: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
1: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
0: रियली?
1: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
0: भारती,
1: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदमगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, मुझे आज्ञा दीजिए, बाय। भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो, तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
1: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा, ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम ही जानती हो?
1: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ, मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है, उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना,
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा।
2: ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
1: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
2: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
1: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो,
2: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
1: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
2: आई एम सो सॉरी उमा।
1: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो,
2: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयां।
1: शुक्रिया, मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हद के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों उतारती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोत कर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम बड़े मीरास्तार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
2: हाँ हाँ आप चिंता

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस दादे कुमार सानी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है,
2: फिर आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूँ?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकिया जरूर।

0: खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
1: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
0: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए। मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो,
0: आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
2: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
0: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
2: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहे तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
0: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
2: नागमणि,
0: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
0: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा, तो ये बात है,
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
0: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
0: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त हम चले जाते हैं।
4: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
0: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
0: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
0: क्या हुआ मामा जी? मामा जी, क्या हुआ सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
4: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
0: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: कोच्चि भांति।
1: अरे उमा तुम अचानक क्या कहते टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: अरे उमा कैसा
0: पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ।
0: क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने,
1: एक मामू।

0: मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह, ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो माँ। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई?
2: जानम माँ, ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
1: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि जानम माँ कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
2: अच्छा,
1: फिर दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारी मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो है उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो
0: भारती, तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो माँ,
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाए।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई। बस
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो, तब तो
1: ये बात है। डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें, औजार, साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं, बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
1: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा, घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी बात तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद स्कूल बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब, आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
0: अरे

0: वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
1: हाँ हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है, बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है। मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई? अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
2: शकुंतला, क्या बात है बताओ?
3: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
1: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
2: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
1: चलो चलो, लंबाऊंगा
2: वो बस ले आ, जल्दी।
4: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
2: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
4: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
2: मुझे किसी का डर नहीं है।
4: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
2: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है, वह दूसरी है कि वह पेड़ में खुलती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
4: लगता है इसके साथ
2: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
4: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
2: मामा जी, आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
4: अब ठीक हूँ बेटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
2: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
4: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
2: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
4: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
2: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
4: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
2: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
4: रात के 10 बज चुके
2: हैं। क्या बात है, इतने बेचैन क्यों है?
3: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
2: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
3: आपके पैर में पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
2: लगता है बहुत सीरियस केस है।
5: मामा जी, मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
6: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
3: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आई डॉक्टर अम्मा,
2: चलिए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो,
0: डाकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
1: क्या कहा,
0: मुझे डराती हो?
1: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
0: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
1: अच्छी हंसी है, मक्का कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रुकता है कि नहीं रुकता?
2: ए डॉक्टर ने धमकाती है, जानती है हम कौन है?
0: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
1: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या
1: सही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं? एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आया आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
1: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
1: शकुंतला पर क्यों जुल्म की बात कर रहे हैं?
2: हाँ वही, और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
1: इससे पहले ही मेरे

0: हाथ करारा जवाब दे देंगे।
1: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो
1: आ?
0: अरे कोई है? अरे भागिए भागिए माली, ऐसा ना हो कहीं देने के तेरे। कायर कहीं के छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
2: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित मटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: विविध भारती पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि

0: काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ
1: गीत
0: गीत
1: सुनिए।
0: सुनिए।
1: जी
0: तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और
1: जी
0: मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973।

0: मैं दिल्ली में ही रहता था और वहां से मैं यहां आया, और यहां आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी,
1: जी
0: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी,
1: अच्छा
0: उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहां बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहां आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आपको?
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था,
1: अच्छा
0: तो उसने बोला कि मैं जहां रहता हूं वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहां कुछ कुछ हो गया,
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा
0: भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूं। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई आपकी?
0: ओपनिंग हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूं अभी।
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता
1: किसी ने कहा
0: है,
1: था?
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं,
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का,
1: अच्छा
0: लेकिन मैं यहां जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे, पूरा
1: अच्छा
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहां उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
1: कोई पैसा नहीं
0: नहीं
1: देते थे?
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहां काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला,
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: यही
1: थे,
0: काम
1: ये
0: करता
1: संघर्ष
0: था।
1: जो
0: अब इसको
1: था?
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहां के लिए आया था, अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे, तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहां बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था,
1: पैसा मिल जाता था
0: इतना
1: आपको?
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहां पर, तो यहां तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूं, आप मेरे साथ चलिए, और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए,
1: अच्छा
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहां जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूं,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बाहर हो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब
1: महबूब
0: आ।
1: आए।

0: आपके माता पिता से बात होती रही क्या, उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे। हाँ। और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या नहीं, आप नहीं, शंकर जी के सानिध्य में रहे क्या?
1: बस उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे? कुछ
1: लगभग 250-250 गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या।
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको

0: लिखना सिखाओ।
1: अच्छा,
0: ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बंबई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते,
1: ऊर्जा आ जाती थी। हाँ, लगता था, मिलता था
0: मोटिवेशन होता था,
1: कभी
0: हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे
1: कौन देता था
0: वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो सकता
1: प्रति,
0: है
1: ना, दीवानगी में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
1: जी, खैर, ये तो
0: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा,
0: उनके जैसा हो सकता है
1: जी,
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
0: जी,
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी, एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
1: जी,
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त टू व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा, और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी।
1: जी, जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई।
0: अच्छा।
1: थी, लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए, और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रही। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को

0: हिल पे घूम रहा था
1: हुँ.
0: और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियां बीबी रहते ही थे वहां पे, तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा.
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे बहुत शानदार, तो, और लेजेंड से
0: उनका
1: थे वो
0: तो क्या कहना।
1: बहुत सुंदर, आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जोड़ी है नंबर वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
2: जी जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
2: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना कैसे चाहिए, वो सब मैंने वहीं से सीखा।
1: वाला थे कि
2: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
2: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी,
2: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा।
2: विजय त्यागी। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
2: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 है शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
2: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
2: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
2: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
2: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा?
2: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
1: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
2: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
1: अच्छा।
2: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ। और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
1: अच्छा।
2: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था। एकदम बेकार, मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
2: हाँ, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र

0: में बहुत फर्क था।
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या।
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: पहली
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी।
0: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो
0: हटके। तो
1: हटके।
0: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बना दी।
1: बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में,
1: बहुत सुंदर है इसमें,
0: पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकेंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी
1: जी।
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, वो जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओढ़ली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी कहानी होती है।
1: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही है, हाँ वो जो है बस वही है
0: जी,
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, तो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा वो करता है वो, करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
0: अच्छा
1: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
0: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा खेला।
1: पैतरा हो गया।
0: जी
1: और फिर अलका

0: जी से मेरी बात हुई। अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है, मैं थोड़ी बिजी हूँ, ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी, और बहुत दिनों से मेरे पास काम हम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया, वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है। अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती।
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो, अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूं, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूं, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब
0: है।
1: एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती है उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उसके लिए,
0: गाते
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते।
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है, उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी, जी,
0: बनाई है, तो
1: जी,
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल
1: का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माय फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो है ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी।
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या मैं, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।
0: हाँ, हाँ, जी,
1: भले बाद में उसको पता लगे कि ये मेरी बहन की सच्चाई
0: है। हाँ, हाँ।
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा
1: तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके और भैया को तू खटके।
0: हाँ, अच्छा।
1: और ये गाना कंप्लीट हुआ
0: जी।
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट हुए।

0: हटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए,
2: क्यों आए,
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा।
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
1: जी, ये सबसे बड़ी
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी।
1: अच्छा,
2: और दादी गाएगी भी।
1: अच्छा,
2: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा।
1: हाँ हाँ।
2: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे, और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा। मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादे हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ, मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी, जी।
2: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया।
1: क्या बात है।
2: और उनको बुलाया, गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक।
1: अच्छा,
2: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं। और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
1: जी,
2: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी।
2: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी,
2: यहां तक तो दादी गाती है।
1: हाँ।
2: अब लड़का क्या जवाब दे। हाँ। दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।

0: बात
1: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल
1: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
0: जी
1: गीत सुनाइए।
0: मैं आपसे यही कहने वाली थी, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
1: हमराज से।

0: आएगी, साढ़े नाल आएगी तो साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी, साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हिसार केंद्र है। श्रोताओं, रिश्ते केवल मुलाकातों से नहीं बनते, कुछ रिश्ते आवाजों से भी बन जाते हैं। आपके संदेश, आपका स्नेह ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। तो आइए अगले एक घंटे तक बातों, यादों और मधुर गीतों के इस खूबसूरत सफर में साथी बनते हैं। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी सुषमा डूडी और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सुरीले सफर की इस प्यारे से नगमे के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कश्मीर की कली का ये प्यारा सा नगमा। अभी हम संदेश हमारे श्रोतागण के पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारे प्लेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। अगले श्रोतागण हैं हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम, इमरान और इरफान खान। हमारे अगले श्रोतागण हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हमारे श्रोतागण हैं सुल्तान सिंह तरर, कपिल देव, हिमानी। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। श्रोताओं, हम आपके संदेश साथ के साथ ले रहे हैं। कहते हैं कि कुछ लफ्ज, कुछ एहसास और कुछ मीठे नगमे, इन्हीं से तो सजती है हमारी शाम। तो आइए सुनते हैं एक और ये प्यारा सा नगमा आपके लिए।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं अभी आपने सुना गीत नागिन फिल्म से और अब

0: लेते हैं कुछ
1: संदेश।
0: संदेश। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और इसके बाद दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, लोखेलाल वर्मा। और इसी के साथ जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा, विलिस डिकोस्ट्रा। और इसी के साथ अगले फरमाइश करते हैं रिंगणी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गांव चूली देशवाली, जिला हिसार से, मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडरेना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडु। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीत रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल। और इसी के साथ गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इसी के साथ सादुलपुर शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, राम कुमार रिवाड़, चंद्रकाल कला रिवाड़। और अगले संदेश करते हैं मंटू शर्मा, गांव शेरडा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा और लीलाधर शर्मा। अब सुनिए श्रोताओं आपका पसंदीदा ये गीत।

0: माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी श्रोताओं, अभी आपने सुना फागुन फिल्म से का ये गीत। अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को। चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव प्रयाग, प्रियांशी, विवेक। गांव ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिवांशी विश्वकर्मा। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। वाइड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति, पोरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। और साथ में ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार शरद देशमुख, कुमार प्रणाली देशमुख, कुमार सानवी देशमुख और कुमार हर्षता देशमुख। रेलवे कॉलोनी हनुमानगंज जंक्शन, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। ग्राम आनगांव, जिला जालना, परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, प्रवाद शिंदे, सभी शिंदे परिवार। अनारकली बाजार जागराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। अगले तहसील ओसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। श्रोताओं, लफ्जों में छिपे जज्बात जब आवाज बन जाते हैं, दूर बैठे अपने भी बहुत पास नजर आते हैं। आपके संदेशों का साथ और गीतों का सहारा, यही पल तो रेडियो का दिलों का सितारा बनाते हैं। अभी सुनते हैं हमारा ये प्यारा सा

श्रोताओं, 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। और आपको हमारा नंबर याद तो होगा ना, 97-292-53-272। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में चलते चलते फिल्म का गीत। और ये सच बात है दोस्तों कि जिस तरह से संगीत हमारे जीवन को निखारता है, उसी प्रकार संदेश जो आप भेज रहे हैं हमें निरंतर, ये भी हमारे लिए एक जीवन कड़ी है, संजीवनी है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आपके संदेश। ये हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, प्रखर शाह, नीति शाह, मंगलाबेन शाह, गांव चोहलदा बागपत से। ये हैं संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया। साथ में हमारे ये साथी हैं बबलू ठेकेदार, शेख वजीर, सोहिल शेख, मोताला बाजार से। और ये हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल, गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद के एफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। ये हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर, नरवेल जिला, बुलढाणा से, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। और ये हैं छत्रपति शिवाजी नगर, खंडवा से, राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। फौजियों के गांव बांडाहेड़ी से मास्टर जगदीश चंद्र जांगड़ा, सतबीर हठी, कृष्ण मोटा, मुकारब टेलर और सुरेंद्र पप्पू। ये हमारे सुनने वाले साथी हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभानगर से। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से ये हमारे साथी हैं दिग्दर्शन और कविता गोड जी। हिसार से हैं हमारे पूर्णा जंक्शन, मस्तानापुर से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। और ये हैं जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। और सतीश अनेजा, विमला अनेजा हैं चंडीगढ़ से। सिद्धार्थ नगर जिला नांदेड़ से आरती छोटी, बबली रूपाली, वंदना धुले, सरुबाई धुले, मराठवाड़ा से। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और आपकी दोस्ती के नाम अगला गाना मेरी तरफ से, हमारी ओर से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दोस्ताना फिल्म से ये प्यारा सा गीत। कभी कोई गीत मुस्कान बन जाता है तो कभी कोई धुन बीते दिनों की खिड़की खोल देती है। शब्द चाहे थोड़े हों लेकिन उनमें छिपा स्नेह हम तक पहुंच ही जाता है, और इसी के चलते आपके संदेश हमारे लिए जो बहुत मायने रखते हैं। अभी हमारा अगला संदेश है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक। अगला संदेश हमें मिला है नारायण कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब, मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हीना, शकीला, जस्मीन, राजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सुराज, मोहम्मद जावेद अंसारी। अगला संदेश हमें मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। अगला हमें मिला है गांव पनिहार चक से, हिसार से, विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा, कहना, लाडू, ममता और समस्त दहिया परिवार। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल, हर्ष। अगला संदेश हमें मिला है डाबकी रोड अकोला से, सुशीला देवी, मंडूरकर, सदानंद और कुमार गौरव। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज भ्यान।

मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू बेया, साजदा रानी, हिना कोसर। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण, संस्कृति पोरुष। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वास्त्रा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्ध कड़वास्त्रा। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एसके पप्पी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतोर, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब पंजाब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल मेहरा। संदेशों का सिलसिला चलता रहेगा, अभी सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजयपथ फिल्म का ये गीत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और वक्त है आपके संदेशों को शामिल करने का। तो ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। और इसी के साथ अगला संदेश सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। गांव चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। और इसी के साथ अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची, तनु करमकर। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर जी दिल्ली वाले, कमल शाहने, जोगिंदर पाल मक्कड़, संजय हरगा, हराबड़ी, पिंगला वाला चौक, कुरगाए, जालंधर। इसी के साथ अगला संदेश हमें दीवाना रेडियो लिसनर क्लब की ओर जवानिया गाजीपुर यूपी से प्राप्त हुआ है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति। गमहरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार। और इसी के साथ अगला संदेश नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद, नदीम। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। गांव पाबड़ा जिला हिसार हरियाणा से दिनेश पाबड़ा, जय भगवान शर्मा, रमेश शर्मा, अस्मित शर्मा, युवांशु, हिमांशु और विजय। गांव घर खरक भूरा जिला जींद से चंदन राज शर्मा, सज्जन शर्मा, दिवाकर। और गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, अमना, सायना दोहिती, शिवम, सचिन, तमन्ना, विष्णु, ईवा धारणिया। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

0: जैसे
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। उम्मीद है यह गीत आपको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को। भोला कॉलोनी गरुंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी जयजान और सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, कृष्ण कुमार डोबी, भूपत कुमार डोबी, राधा तनवर, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी, गांव टूंकिया जिला बालोतरा राजस्थान से। दोस्तों, गीतों के साथ संदेशों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

सबसे बड़ी पूंजी है। इसी अपनेपन और विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम से अनुमति चाहते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार।

0: अब दिखता है।
1: आज के संगीत संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम में सुषमा डूडी के साथ थे रितु इंद्रजीत जी और कुमार रोहित।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,770

उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक

के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका अनुप्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। 6:20 पर आप सुनेंगे इस वंदना पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से होगा। 6:30 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा उमंग, जिसमें चर्चा होगी कि पसीने की हर बूंद लिखेगी कामयाबी की नई कहानी, पसीने से पदक तक। 7:00 किसान भाई सुन पाएंगे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें मशरूम की फसल पर चर्चा होगी। 7:30 पर हमारे गांव कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें चर्चा होगी गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार। रात्रि 8:00 कार्यक्रम होगा परिक्रमा। 8:30 पर आप सुन पाएंगे खुला आकाश, एक फिल्म से। 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे, जिनका अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, 9:00 आपको विविध भारती लिए चलेंगे। रात्रि 8:00 आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण होगा।

श्रोताओं, कल 5:55 पर आरंभिक उद्घोषणा होगी। 6 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से वंदनवार। 6:45 पर कार्यक्रम रूपरेखा सुन पाएंगे। 6:55 पर संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। 7:10 पर हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। 7:40 पर सुपर भात। 8 बजे आप सुन पाएंगे समाचार पर भात। 8:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। 8:30 पर आपको विविध भारती लिए चलेंगे। 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रोग्राम होगा। 9:30 पर विविध भारती से। 10 बजे आप नारी मंच सुन पाएंगे। 10:30 पर बाल सभा कार्यक्रम सुन पाएंगे। 10:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात। श्रोतो, 12 बजे आपको विविध भारती लिए चलेंगे। 1:05 पर आपको प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। 1:10 पर विविध भारती से प्रोग्राम होगा। 2 बजे आप सुन पाएंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे। 2:30 पर विविध भारती से ही कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। 3 बजे आप सुन पाएंगे न्यू इंडिया समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 3:10 पर विविध भारती लिए चलेंगे। और 5:30 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी हिसार का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हिसार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा। अभी आपको लिए चलते हैं प्रादेशिक समाचार के लिए चंडीगढ़ आकाशवाणी केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए और हरियाणा में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के तहत लगभग 36 लाख बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि उनकी नियमित निगरानी की जा सके। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरे का संग्रहण हो तथा कहीं भी गंदगी के ढेर न लगने दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों का अधिक आवागमन रहता है वहां विशेष रूप से साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। सड़कों की नियमित सफाई के साथ साथ उनके किनारों पर वन विभाग द्वारा फूलदार एवं आकर्षक पौधों का रोपण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में वार्ड समितियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए उनके लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए ताकि समिति के सदस्य एवं नागरिक अपनी समस्याएं एवं सुझाव सीधे साझा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कार्यों के लिए नई आवश्यकताओं एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां अभी से शुरू करने तथा इसका विस्तृत कैलेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्रैमासिक आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों की स्वच्छता एवं कार्यप्रणाली की रैंकिंग तय करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों और सफाई कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाए। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी बड़े नालों, नालियों एवं ड्रेनों

0: की व्यापक सफाई 30 जून तक हर हाल में पूरी करने और गलियों की नालियों की नियमित सफाई करने और उनमें आवश्यकता अनुसार चूने का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए ताकि जल भराव एवं संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों एवं जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। आज मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली CFMS के संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने, उनकी जिला एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा इंट्रा हरियाणा पोर्टल का सभी विभागों में प्रभावी एवं अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में कल पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान लगभग 36 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 28 जून को 17,331 बूथ स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद 30 जून तक 34,000 टीमों द्वारा घर घर जाकर छूटे गए सभी पात्र लाभार्थियों को पोलियो बूंदें पिलाई जाएंगी। जींद प्रशासन कल से शुरू हो रहे 3 दिवसीय पोलियो पल्स अभियान के लिए तैयार है। उप सिविल सर्जन एवं पल्स पोलियो अभियान के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजेश भोला ने आज कहा कि इसके लिए सभी प्रशासनिक व चिकित्सा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता और सिविल सर्जन की देखरेख में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अभियान को अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: देखिए, हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले भी जैसे पल्स पोलियो का अभियान चलता रहा है, उसी तरीके से जैसी सरकार की हिदायत है 30 जून तक पल्स पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिला जींद के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। DC महोदय ने आम जनता से आह्वान किया है कि अभिभावक अपने 0 से 5 वर्ष तक के जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी को 28 जून को पल्स पोलियो का जो पहला दिन है बूथ पर जाकर ही सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएं।
0: उन्होंने बताया कि इस बार जिला जींद में 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 1,38,044 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आधुनिक प्रबंधन का दायरा अब केवल दक्षता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में वैश्विक चुनौतियों, तकनीकी बदलावों और समाज के प्रति निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। श्री संधू ने विद्यार्थियों से कहा कि नेतृत्व का आधार अधिकार का योग नहीं बल्कि स्पष्ट सोच, परिस्थितियों के अनुरूप समय को ढालने की क्षमता, ईमानदारी और विश्वास अर्जित करने की योग्यता है। उपराज्यपाल ने प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता की शक्ति का उपयोग करें तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में योगदान दें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बाद में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कुलपति के साथ बैठक भी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी प्रभाव और समस्याओं के समाधान में उनके प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। पलवल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र सिंह

0: हिल्लर ने आज जिले के सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटि रहित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाती है। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी देते हुए डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा,
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR 2026 का कार्य हमारे जिले पलवल में चल रहा है। पलवल के ज्यादातर BLOs ने SIR 2026 के इन्यूमरेशन फॉर्म्स या परपत्रों के वितरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है और अब सभी BLOs घर घर जाकर ये फॉर्म्स या परपत्र एकत्रित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। मेरा पलवल जिले के सभी मतदाताओं, विशेषतः युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रक्रिया में सहयोग दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को GPS प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। दिन भर की व्यस्तता के बाद अब समय है कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताने का। आइए मन को शांत करें, प्रभु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हम सभी को सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख और शांति प्रदान करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईश वंदना पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत। लीजिए श्रोताओं, अभी 6:30 पर चंद लम्हों में आप सुन पाएंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा उमंग, जिसमें चर्चा होगी कि पसीने की हर बूंद लिखेगी कामयाबी की नहीं कहानी। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि कैसे पसीने से पदक तक कोई पहुंच सकता है।

लेकर आती है नई उमंग, नया उत्साह और नई प्रेरणा। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके साथ ही वागीशा वाशिष्ठ, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल शरीर को नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र के भविष्य को भी बढ़ाता है। आज के कार्यक्रम का विषय है पसीने से पदक तक। तो दोस्तों, एक सवाल से शुरुआत करते हैं, और सवाल है कि अगर आपको दो विकल्प दिए जाएं, एक घंटा मोबाइल चलाना या एक घंटा मैदान में खेलना, तो आप क्या चुनेंगे? मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले मोबाइल देख लेते हैं, बाकी काम बाद में देखेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद शायद आपका ये जवाब बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, और यदि ऐसा होता है तो आकाशवाणी हिसार का प्रयास निश्चित तौर पर सफल रहेगा। दोस्तों, एक बहुत सुंदर पंक्ति है, पदक केवल धातु का टुकड़ा नहीं होता, वह वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन और त्याग होता है। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यही कारण है खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का सर्वोत्तम पाठशाला है। हमें खेल, अनुशासन, समय का सम्मान, नेतृत्व, टीम भावना, धैर्य, हारने के बाद फिर उठना आदि आदि चीजें सिखाता है। साथियों, आज का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं, ना कि कोई और इंसान, बल्कि मोबाइल की लत है। आज बच्चे मैदान कम और स्क्रीन ज्यादा देखते हैं, अंगूठे की एक्सरसाइज बढ़ रही है लेकिन शरीर की नहीं। सोचिए अगर हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो हम तुरंत चार्जर ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर थक जाता है तो क्या हम उसे खेल से चार्ज करते हैं? शायद नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, खेलों के साथ साथ एक विषय ऐसा भी है जिस पर नजर डालना बेहद आवश्यक है, युवाओं में ड्रग्स और स्टेरॉइड्स की बढ़ती लत। दोस्तों, कई युवा जल्दी सफलता पाने, बेहतर शरीर बनाने या आप जैसे हम जैसे साथियों के बीच दबदबा बनाने के चक्कर में आकर इनका सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन यह आदत उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य, करियर और भविष्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। याद रखिए,

असली सफलता किसी शॉर्टकट में नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और धैर्य से मिलती है। दोस्तों, ताकत इंजेक्शन और स्टेरॉइड से नहीं बल्कि सही खान पान, अनुशासन और मेहनत से बनती है। जो ताकत स्टेरॉइड्स कुछ महीनों के लिए देते हैं, वही भारतीय भोजन और मेहनत जीवन भर की सेहत और आत्मविश्वास देता है। प्रोटीन का असली खजाना हमारी दालें, दूध, दही, पनीर और बाजरे में है, न कि खतरनाक ड्रग्स और स्टेरॉइड्स में। हमारे पहलवानों और खिलाड़ियों की असली ताकत हमेशा अखाड़े की मेहनत और भारतीय थाली से आई है, न कि नशे और स्टेरॉइड से। नशा नहीं, निश्चय चुनिए, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज नई उमंग के संग आइए कुछ नए शब्द सीखते हैं। पहला, जिजीविषा अर्थात जीवन जीने की तीव्र इच्छा। दूसरा, अदम्य साहस यानी ऐसा साहस जिसे कोई भी कठिनाई दबा ना सके। तीसरा, अविचल संकल्प मतलब ऐसा निश्चय जो परिस्थितियों से न डगमगाए। यही तीन बातें हर महान खिलाड़ी की पहचान होती है। अब जरा सोचिए, खेल ना होते तो क्रिकेट नहीं होता, फुटबॉल नहीं होता, बैडमिंटन नहीं होता, हॉकी नहीं होता, तो छुट्टियों में क्या करते? कुछ लोग कहेंगे सोते, और कुछ कहेंगे मोबाइल चला लेते, या कुछ कहेंगे कहीं घूमने चले जाते। लेकिन असली मजा मैदान की मिट्टी में है। सपने देखने वालों की कमी नहीं है, ये भी एक कड़वा सच है दोस्तों। लेकिन सपनों के लिए पसीना बहाने वाले ही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। जो विद्यार्थी खेलते हैं उनकी एकाग्रता बेहतर होती है, उनका आत्मविश्वास अधिक होता है, वे तनाव कम महसूस करते हैं। लेकिन पढ़ाई और खेल दोनों एक दूसरे के ही साथी हैं। बताइए, अगर क्रिकेट में गेंद ना हो तो क्या होगा? फिर बैट्समैन केवल हवा में शॉट लगाएगा। और अगर फुटबॉल में गोल पोस्ट ना हो तो खिलाड़ी कहेगा गोल हुआ है और इसे मान लो। इसलिए हर खेल के अपने नियम कायदे होते हैं, और नियमों का पालन ही खिलाड़ी की पहचान है। हर चैंपियन के पीछे होती है कठिन मेहनत, अनुशासन और एक गुरु का साथ, साथ जैसे आपका और हमारा। इसी साथ को और खूबसूरत बना रहा है ये गीत, जो संघर्ष, अनुशासन और खेल भावना की प्रेरणा से भरपूर है, फिल्म दंगल का लोकप्रिय गीत। तो आइए सुनते हैं यह उत्साह और प्रेरणा से भरपूर गीत।

कोई खिलाड़ी तिरंगा लेकर पोडियम पर खड़ा होता है और राष्ट्रगान बजता है तो केवल खिलाड़ी नहीं पूरा भारत गर्व से उठता है। उस समय भाषा, धर्म, प्रदेश सब पीछे रह जाते हैं, केवल एक पहचान रहती है, हम भारतीय हैं। मैदान में उनका हर दाव केवल जीत नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। और आज हम सबके बीच उपस्थित है एक अंतरराष्ट्रीय युवा पहलवान ज्योति बेरवाल। इन्होंने 2024 में हुई स्पेन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जूनियर एशियन चैंपियनशिप जो कि 2024 थाईलैंड में आयोजित की गई थी, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 2024 और 25 में आयोजित जयपुर और अहमदाबाद में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि 2023-2025 में आयोजित हुई, उनमें भी ज्योति बेरवाल ने भारत की

0: ओर से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही साथ इन्होंने एशियन चैंपियनशिप जो कि 2025 वियतनाम में आयोजित की गई थी उसमें भी ज्योति ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर भारतवासियों को गौरवान्वित किया। ज्योति आपका युवा उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू वागीशा,
0: हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
1: आपका धन्यवाद करना चाहूंगे मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
0: हर खिलाड़ी की सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। अगर आपको अपने पूरे सफर को श्रोताओं के लिए बताना हो तो आप क्या कहेंगी?
1: मेरा नाम ज्योति बेरवाल है, मैं हिसार हरियाणा से रहने वाली हूँ और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हूँ। तो मैं एक रेसलिंग बैकग्राउंड से बिलोंग रखती हूँ। मेरी मदर भी एक रेसलर थी और वो ये चाहती थी कि मैं भी रेसलिंग करूं और देश के लिए मेडल जीतूं। शुरू शुरू में तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मैं रेसलिंग में इंटरेस्ट इतना नहीं रखती थी, पर मेरी मदर चाहती थी कि मैं रेसलिंग करूं तो मैंने ट्राई किया। जैसे मैं हर रोज मैट पे जाती थी प्रैक्टिस करने, मुझे अच्छा नहीं लगता था पर मैं फिर भी जाती थी, मैं मेहनत करती थी, मैं कोशिश करती थी, मुझसे जितना होता था मैं करती थी। तो धीरे धीरे मेरा रेसलिंग में इंटरेस्ट अपने आप बनने लग गया और जैसे मेहनत मैं करती रही और धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आया।
0: और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये बातें सुनकर अनेकों लोग आज प्रेरित होंगे। आपके जीवन का ऐसा कौन सा पल था जिसमें आपको यह विश्वास दिलाया कि मुझे पहलवान ही बनना है?
1: जी, तो मेरी जिंदगी का वो पल जब था जब पहली बार मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में रेसलिंग का जो करेज है वो और स्टेटों से बहुत ज्यादा है। तो हरियाणा जैसी स्टेट से फर्स्ट आके नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उस समय मुझे मेरे ऊपर विश्वास हुआ कि हाँ मैं भी रेसलिंग में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। उस समय मुझे ये हुआ कि हाँ अब मुझे पहलवानी करनी है और मुझे एक अच्छा पहलवान ही बनना है और मुझे देश के लिए मेडल लेके ही आना और मैं कर सकती हूँ।
0: बेहतरीन। तो ज्योति, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि यदि इस समय भारत का हर एक विद्यार्थी आपको सुन रहा हो तो आप उन्हें अपने सपनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों या सभी युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहूंगी कि आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में हो, आपको कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप 4 दिन काम करते हैं और 5वें दिन ये सोचते हैं कि आज रेस्ट ले लेते हैं तो वो काम नहीं होगा। आपको अपने पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जितना टाइम आप उसको देंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत बहुत जरूरी है और टाइम पे हर एक चीज करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी पार्ट होता है अपने कमजोरियों पर काम करना। जहां पे अगर आपको ये लगे कि हाँ मैं इस पॉइंट पे कमजोर हूँ तो आप बार बार उस पर काम कीजिए, उसको पावरफुल बनाइए, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हर एक काम लगन से कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, पर यदि आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में चूक जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। खुद पे विश्वास रखिए, जरूर काम होगा। और अपने माता पिता और अपने गुरु का आदर कीजिए, उनकी दी हुई राह पर चलिए। आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर कहीं नहीं चूकेंगे। यदि आप उनका कहा हमेशा मानेंगे तो आप जरूर जीवन में एक दिन बहुत बहुत बहुत सफल होंगे।
0: जी बिल्कुल, खेलों की राह आसान नहीं होती। आपके जीवन में भी कई चुनौतियां और कठिन समय आए होंगे। ऐसे समय में आपने खुद को कैसे संभाला और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे श्रोताओं से आपका अनुभव साझा करें।
1: खेलों की राह आसान नहीं होती, एक खिलाड़ी का जीवन आसान नहीं होता। खिलाड़ी को अपने जीवन में अनेकों त्याग करने पड़ते हैं। एक खिलाड़ी को सुबह उठकर जल्दी प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे धूप हो, तूफान हो, ठंड हो, बारिश हो, पर वो अपनी मेहनत करता है, वो टाइम से प्रैक्टिस करता है। कई बार शरीर में दर्द भी होता है, चोटें भी लग जाती हैं। चोट लगने के बाद एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है, क्योंकि उस चोट को ठीक करने के लिए उसको रेस्ट लेना पड़ता है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है, उस परफॉर्मेंस को दोबारा बरकरार करने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ खिलाड़ियों को पैसों की कमी के कारण खेल छोड़ना भी पड़ता है, पर अब सरकार भी बहुत एक्टिव हो गई है खेलों के मामले में। वो ग्राउंड लेवल से हर प्रकार से खिलाड़ियों की मदद

0: कर रही है और जैसे जैसे खिलाड़ी उभरता है वैसे वैसे सरकार उसको मदद करती है। और जरूरी नहीं होता कि एक खिलाड़ी यदि सही मेहनत कर रहा है, सच्ची लगन से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो जीतेगा। उसको कई बार अपने फील्ड में, अपने करियर में हार का सामना करना पड़ता है। जब एक खिलाड़ी हारता है तो वो अंदर से टूट जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी प्रैक्टिस की पर मेरा रिजल्ट नहीं आया। पर इस चीज से उसको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको मोटिवेशन के रूप में लेना चाहिए। अगर वो अपने कमियों पर काम करेगा, अपने मैच को दोबारा दोबारा देखेगा कहाँ कमी थी, अपने कोचेस से बात करेगा और अपनी कमियों पर सुधार करेगा तो वो जरूर एक दिन जीतेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, एक बात याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं पर उन्हें सच करने वाले वही लोग होते हैं जो मेहनत करने का साहस रखते हैं।
1: ज्योति, मेरा अगला सवाल, पढ़ाई का संतुलन और खेलों का संतुलन आपने कैसे बनाया, जरा इस पर अपने विचार साझा करें।
0: मेरे अनुसार खेलों के साथ साथ पढ़ाई में संतुलन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि खेल और पढ़ाई एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पढ़ाई हमें ज्ञान देती है और खेल हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यदि हम मेहनत, अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़े तो दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं रेसलिंग की नियमित प्रैक्टिस करती थी। मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे से होती थी। 5 से 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती थी, इसके बाद मैं स्कूल चली जाती थी। स्कूल से लौटकर मैं थोड़ा आराम करती थी ताकि मुझे शाम की ट्रेनिंग के लिए सफिशिएंट एनर्जी मिल सके। फिर शाम को 4 से 8 बजे तक फिर से रेसलिंग की प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस के बाद मैं अपना खाना खाकर फिर रोजाना लगभग 1 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकालती थी। इस तरह मैंने समय का सही प्रबंधन करके पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेकर चलना सीखा। मेरा मानना है कि पढ़ाई और खेल एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। और अगर मैं 2 शब्दों में बताऊं तो यदि सपने बड़े हों, इरादे मजबूत हों और समय का सही प्रबंधन हो तो मैदान की जीत और पढ़ाई की सफलता दोनों आपके कदम चूम सकती है।
1: आपके प्रेरणादायक विचार निश्चित रूप से हमारी सभी श्रोताओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास देंगे। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद।
0: थैंक यू वागीशा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आकाशवाणी का, जो उन्होंने मुझे युवाओं के कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया।
1: हम आपके उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता की कामना करेंगे। धन्यवाद। प्रिय युवाओं, याद रखिए, मैदान केवल खिलाड़ी को नहीं बनाता बल्कि मैदान इंसान भी बनाता है। खेल दूसरों का सम्मान करना, हार स्वीकार करना और नई ऊर्जा, नए जोश से खड़े होना सिखाता है। पसीने की हर एक बूंद कल पदक बन जाएगी, मेहनत की ये सच्ची राह मंजिल तक पहुंचाएगी। श्रोताओं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें radiohisar@gmail.com पर और हमसे अपने विचार साझा करें और हमें अपना फीडबैक आकाशवाणी फेसबुक पेज पर जरूर दें। और अब कार्यक्रम के समापन से पहले आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि जब मेहनत और विश्वास साथ हो तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप असफल हो, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। आइए सुनते हैं यह गीत, तू है चैंपियन।

0: दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको महान बनाता है। और अंत में, जिस देश के मैदान आबाद होते हैं, उस देश का भविष्य भी आबाद होता है। तो आइए, मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकले, खुले आकाश के नीचे जाएं, मैदान की मिट्टी को महसूस करें, अपने शरीर को स्वस्थ, अपने मन को प्रसन्न और भारत को गौरवान्वित बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। मैं हूं आपकी मित्र वागीशा वाशिष्ठ। आप सुन रहे थे युवा उमंग 102.3 मेगाहर्ट्ज़ का विशेष कार्यक्रम युवा उमंग। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच, नई उमंग के साथ। नमस्कार, जय हिंद, और खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया।
4: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
5: RADIOHIS

0: SAR यानी radiohisar@gmail.com पर।
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
0: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंद

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम किसान वाणी।

0: राजेंद्र भाई राम राम।
1: सावित्री बहन आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भैया भी
0: राम राम, राम। और राजेंद्र भाई आजकल के कुमारे हैं?
1: देखो सावित्री बहन, बात यह है कि भी जमींदारी का काम है, न्यू कहा करें कि भाई एक मिनट का भी टाइम को नहीं होता काम करनी हो तो। सवेरे तो सांझ ताई फसल हो, चैना हो, किसा ही मौसम हो, क्योंकि जमींदार ने तो न्यू कहा करें भाई सारे दिन खेत में रही जा। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि भाई और कोई काम ना हो ना तो खेत में गेड़ा जरूर मार लेना चाहिए, चुगलिया फसल के सिर पर को हाथ फेरिया उतना ही बतेरा हो।
0: और राजेंद्र भाई बहुत जरूरी हुआ है, फसल के सिर पर हाथ फेरना है ना, यो सब तो जरूरी हुआ है। क्योंकि अगर सुबह शाम आप जाके देखा खेत में, क्योंकि कोई कीट आ रहा है, कोई आ रही बीमारी आ रही है, कोई सूखा आ रहा है, कोई और तरह की चीज आजकल बेरा नहीं पड़ता के फसल में आ जाए बीमारी। अगर आप सुबह शाम जाके देखा होंगे ना फसल ने, तो आपने पता चलता रहेगा कि फसल में किस चीज की शुरुआत है, अच्छी है, न्याऊ है, सूखा है, गिल्ला है। तो ये इसलिए सुबह शाम खेत में जाना किसान भाई का बहुत जरूरी है। बेशक आप खेती ठेके पे बटाई पे कराओ, पर जब तक किसान भाई खुद अपने खेत में जाकर नहीं देखा होगा तो अच्छी पैदावार नहीं ले पाओगा।
1: भाई देखो इसमें तो कोई शक नहीं कि खेत में गेड़ा मारने का मतलब ये है कि जब भी आप जाओगे तो किमिन किमिन जरूर करके आओगे, किमिन किमिन डोरा नाका जो है, या बारिश का टाइम हो तो पानी कर दे देखना है, कितने काटना है, कितने खड़ा तो नहीं हो गया है, या कितने खरपतवार है, या फिर कोई जो है उसमें रोग तो नहीं आ गया। कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप रोज और खड़े रहोगे जब जाके बात बनेगी। और भैया ने एक बात और हम कहते रहे कि भाई देखो सावित्री बहन, जिस तरह एक परंपरागत खेती की बात करें तो मान लो 6 महीने में फसल आवे, तो हम तो भैया ने सलाह ये भी दे हैं कि भाई आप जो है ना इसकी गेलें गेलें जो है कोई सहायक जो है उसका व्यवसाय आप अपना लें, और सहायक धंधा भी आप इस तरीके का देखें कि जिसमें लागत भी आपकी घाट हो। क्योंकि चौथी बात यह है ना, क्योंकि भाई जमींदार भाई हर किसी का जो है इतना जुगाड़ नहीं होता, तो जिसमें लागत कम हो, मान लिया हम डेयरी फार्मिंग की बात करें कि भाई जमींदार भाई है तो तूड़ी घर की है, बरसीन है, हरा चारा हो जाए है, तो डेयरी फार्मिंग भी आप कर सकें।
0: और डेयरी फार्मिंग के राजेंद्र भाई फायदे ही बहुत हैं, क्योंकि डेयरी फार्मिंग पर आजकल किसान भाई अगर सोच समझ के काम करेगा और प्रशिक्षण लेकर काम करेगा, तो जब आप डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहो ना, तो गवर्नमेंट आपने सब्सिडी भी देवे है। आजकल किसान कार्ड की तरह अपने पशुओं पर भी कार्ड बने हैं,
1: जी
0: तो अपने ज्यादा लागत आपकी आंधी दिखे तो आप उसमें ऋण ले सकें और उस पर सब्सिडी भी है। तो इस प्रकार भी किसान भाई डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर सके हैं। और बात करें साथ साथ में, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और एक और बात है दिमाग में राजेंद्र भाई, मशरूम मशरूम की खेती होगी। अगर भाई मशरूम की खेती करे तो उसमें थोड़ी सी जगह में की जा सके है। जिस किसान भाई के पास ज्यादा जमीन नहीं है, या आपका मान लीजिए एक अगर ना प्लाट जितनी जगह भी हो, इतनी जगह में मशरूम की अच्छी पैदावार ली जा सके है।
1: बिल्कुल, देखो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें जो है ना आपकी लागत ज्यादा नहीं आओगी। हमने डेयरी फार्मिंग की बात करी क्योंकि ना आपने उस पर कोई कंस्ट्रक्शन का पीछा लगाना है ज्यादा, ना कोई बाहर से कोई बड़ा ताम झाम करना है। इसमें मधुमक्खी पालन की बात भी करेंगे क्योंकि जो जिसमें खर्चा बहुत कम हो, आप शुरुआती दौर में जो है थोड़े से तो शुरू कर ले, मान लिया आपने 10 बक्से तो शुरू कराया, उसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा आपका है नहीं। अगर आपके खेत है तो ठीक है, जिस तरह सरसों का जब सीजन आओ है, या फिर भी सरसों का सीजन भी नहीं है तो भी आप जो है खेता में उसने रख दें बक्से, उस पर आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं आया, सिर्फ संभाल करने की बात है। और एक बात जो हम बार बार भाई कहते रहे कि जो भी आप नया काम करें तो उसका जो है ना प्रशिक्षण जरूर ले लें, क्योंकि सावित्री बहन ओके है।

अपने उरे कि भाई किसी भाई ने कोई नया प्रयोग कराया और वो खुदा ना खास्ता चाल नहीं पाया, तो वो फिर जो है ना वो उदाहरण बन जाए, फिर लोग यूं कहना शुरू कर दें बोले फलाने ने वो धंधा करा था बनाया था बोले वो व्यवसाय करना चल रहा था वो बोला फेल हो गया, लेकिन आप यूं नहीं देखते भी उसके पाछे कारण क्या रहा है। उसके पाछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, भी देखो आपने ट्रेनिंग मिल ली ठीक तरीके से और आप

0: शिक्षण उन्दा रहे है और उसकी जानकारी भी हम रेडियो के माध्यम से भाई यहाँ तक पहुंचाते रहा हूँ। चाहे वह राजेंद्र भाई बात डेयरी फार्मिंग की हो, चाहे मधु मक्खी पालन की हो, चाहे अपने मछली पालन की हो, चाहे किसी भी अपने व्यवसाय की बात हो, सबसे जरूरी है प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण आपके पास होगा, आपके पास प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होगा तो ही आप किसी भी व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित है ऋण ले पाओगे और तभी आप उस सब्सिडी का लाभ उठा पाओगे। देखो भाइयों, यूं तो करना नहीं है कि आपने सिर्फ ऋण लेने के लिए, सब्सिडी लेने के लिए अपना काम करना है। काम करना है अपने अच्छी नीत के लिए, अच्छा मुनाफा करने के लिए, अपने भविष्य देख के काम करना है। और आप कभी भी ये मत सोचो कि एक बार काम कर लिया या एक साल की मेहनत कर ली काम सक्सेस नहीं, आगे नहीं करना। देखो कोई भी काम आप शुरुआत करोगे तो पहले थोड़े दिन आपने उसमें परेशानी आवेगी, हो सके आपने मुनाफा कम हो, पर जब उसको लगातार आप 2-3 साल कर रहे हो और सोच समझ के प्रशिक्षण लेके गाइडेंस लेके कर रहे हो तो आप उसमें मुनाफा जरूर उठा पाओगे।
1: देखो सावित्री बहन, एक बात तो है, सब्सिडी की बात आंदी है ना, कई भाइयों के कान खड़े हो जाए,
0: बिल्कुल,
1: तो मतलब उसमें आप जो उसका दुरुपयोग ना करें। देखो आपने जो उल्टा ऋण लौटान की बात करी ना, तो भाई बैंक में पीछे आऊंगे कर देते हैं। बात यह है कि भाई बैंक में तुम्हारे जिस भाई ने जरूरत होगी, जिस तरह पुराने टाइम में नहीं हुआ करता,
0: हाँ।
1: वो पीछे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके मान लिया आपने एक जगह जमा कर रखे, जिस भी भाई ने जरूरत पड़ी उसने अपना काम निकाल लिया, उसने दे दो और फिर वो उल्टे जमा करा दे। बैंक का मतलब भी ये है कि भाई देखो आपकी सहायता सरकार कर रही है, तो यूं नहीं है कि वो खान खातर नहीं है, आपने अपना काम काट दिया जो वापिस जमा करा दिए और दूसरे भाई ने जरूरत पड़ी दूसरे ने दे दिया, तीसरे ने दे दिया। तो कहने का मतलब मोटे तौर पर सब्सिडी ने उस तरीके से ना देखें, उसमें एक मदद के तौर पर देखें जो थोड़े ही टाइम खातर आपकी करी गई। और चौधरी बहन आप जिक्र कर रहे थे मशरूम का,
0: बिल्कुल
1: उस पर विस्तार से भाई बातचीत करेंगे, पहले थोड़ा मनोरंजन करा दें। तो सुनिए रागिनी सौर सम्राट मास्टर सतबीर बैंसवाली और साथियों की आवाज में।
2: जब का अकलमंद बचेरी

दस पैरे पे जो बोझ के हवा उमंग की एरे चार का भाग पांच संग मिलके अजोकी दो धारी जंग की पांच का रूप स्वरूप से मिलके

बोलर करें जगत न्यू मनमोहनी खातरी इतना कुनबा इकट्ठा कर लिया

खेल खेलावाने लागे। एक शक्ति दोने नौ के बीच तीर चलावाने लागे। अरे ईश्वर व्यापक इजर चेतन की डोर लावाने लागे। भूप पुरंदन और बहु

ये तो सुने आपने मास्टर सतवीर और साथियों तई, और बात सावित्रीबाणी कर रहे थे कि वे सहायक धंधे की बात कर रहे थे, क्योंकि परंपरागत खेती जो है वह तो मान ली 6 महीने में आप दौर पीछे आने। तो देखो किसान भैया, हम यूँ कहें कि भाई ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना वाली बात कर लें, क्योंकि देखो जिम्मेदारी के लिए एक बात और जुड़ी है कि भाई 6 महीने की आपकी फसल मान ले पक्की तैयार होगी, केव तो परमात्मा ऐसा सूत बिठा दे कर तो पानी चढ़ गया या फिर आंधी तूफान आ गया तो नुकसान होने का अंदेशा भी रह जाए। तो आप ऐसा काम कर लें कि थोड़े टाइम की खेती हो, और उस तो जो है ना आपने उस 6 महीने की बात ना देखनी पड़े, क्योंकि सावित्रीबाण जो खर्चे जो हैं वो दिन भर बढ़ते जाएँ। तो जय जमींदार भाई के थोड़ा

0: ऐसा महीने दो महीने में चार महीने में बीच बीच में थोड़े से पीछे आते रहे ना तो फिर काम ठीक चल जाए।
1: बिल्कुल राजेंद्र भाई, देखो इसी से काम तो किसान बहन भाई ने करने पड़ेंगे, सहायक व्यवसाय तो करने पड़ेंगे। और आज आप बात करेंगे मशरूम का प्रसंस्करण पर। जो भाई मशरूम की खेती करे हैं उसका अच्छा लाभ करने लग रहे हैं, तो मशरूम ने आगे अपन किस तरह प्रयोग कर सके हैं जब आप नहीं कर पाते उस टाइम में। तो मशरूम एक बहुत जल्दी खराब होने वाली जो अपनी सब्जी है, इसीलिए ताजा मशरूम ने केवल 2-3 दिन फ्रिज में अपन रख सका है। लंबे समय तक स्टोर करने खातर, इसका मूल्य बढ़ाने खातर, इसका प्रसंस्करण करना यानी प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। इसे आप अच्छा तरह सुखा कर डिब्बा बंद करके अचार बना के या पाउडर बना के भी बेच सके हैं, जो महीनों वर्षों तक आप इस तरह रख सके हैं और अच्छा मुनाफा आप कर सके हैं। तो इसकी जो प्रोसेसिंग की मुख्य विधियां क्या क्या है उस पर आप बातचीत करेंगे।
0: बिल्कुल, देखो शौत्रीवन, पहले तो भैया बता दें कि जो प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जोड़ा सा शब्द है भाई, इसका मतलब ये हो कि जो आपकी मशरूम की खेती है वो नाजुक है, उसकी संभाल को कर रहे हैं, क्योंकि उसने लंबे टाइम तक यहाँ पर रोक के रख सके हैं। उसका कारण ये हो कि भाई इसमें जो नमी है वह 85-90% हो है, और वो 24 से 48 घंटे में यह फसल जो है आपकी खराब हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो हार्वेस्टिंग आप करें, मतलब इसकी तुड़ाई जब करें, उसके तुरंत बाद जो है ना 2-3 घंटे के भीतर जो है ना इसकी प्रोसेसिंग आप कर दें। उसकी संभाल की जो विधियां क्या करेंगे उन पर भी बात करेंगे। इसमें आप एक चीज तो ये कर सके हैं कि भाई इसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो ना, तो इसमें जो है ना पहले तो साफ पानी तो आप धो लें, गर्म पानी थोड़ा सा लेके ना, इस जिसने ब्लीचिंग आप कहा वो आप कर सके हैं, और साफ पानी तो धो की जो है ना इसकी मिट्टी पहला साफ कर लें, और उस पानी में जो है थोड़ा सा नमक और आपके पास जो है ना पोटेशियम उसमें थोड़ा सा मिला सके हैं, पानी में उबाल लें और 2-3 मिनट खातरे भाई उसमें डुबो के रखें, ज्यादा लंबे टाइम तक उसने उसमें ना रखें। उसके तुरंत बाद जो है इसमें ठंडे पानी से धो लें, उसमें छान के जो है वो सुखा लें, और फिर जो है ना वो लंबे समय तक थोड़ा सा आपका साथ देगी। फिर भी कोशिश यह करें कि जितना जल्दी हो उसके इसने मार्केट में भेज सके। अगर कोई परिस्थितियां इसी जल्दी नहीं भेज पाते तो आप इसकी प्रोसेसिंग जरूर कर लें।
1: बिल्कुल, और प्रोसेसिंग करने के जो तरीके, एक तो आपने बता देते हैं सुखा ले, सबसे आसान तरीका और लोकप्रिय तरीका है इसको सुखा के आप प्रोसेस करके रखना
0: जी।
1: ताजे मशरूम को साफ करके पतले पतले स्लाइस काट के भी आप सुखा सके हैं, तेज धूप में, सूरज की रोशनी में या ओवन में 50 से 60 डिग्री तक का इसमें भी सुखा सके। 8 से 12 घंटे तक सुखानी पड़ेगी, जब इसका प्रोसेसिंग में आप कई दिन तक चला सकेंगे। नमी पूरी तरह निकल जानी चाहिए। एयर टाइट डिब्बे में रखें या पॉलिथीन में रखें, सेल्फ लाइफ बढ़ाने खातर 5-6 महीने बढ़ा सकें इस तरह आप करके। और इसका उपयोग फिर बाद में आप कर सकें सूप में, सब्जी में, नमकीन वगैरह बनाने में, जो भी अपने घर में चीजें बना आप उसका बाद में इस्तेमाल कर सका 5-6 महीने तक
0: जी। एक चीज का और ध्यान कर लें, जो आपने ब्लैच और मशरूम कर ली है उसने या तो कांच के डिब्बे में, टीन के डिब्बे में आप इसने भर सके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि 2-3% नमक और थोड़ा जो है ना साइट्रिक एसिड उसमें मिला लें, जो खारा घोल बन जाए वो आप उसने डिब्बे में डाल लें, और डिब्बे में सील करके थोड़ा सा उच्च तापमान वाली जगह रखें, तो फिर जो है इसका लाइफ थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा।
1: बिल्कुल, सब तो जरूरी है कि एयर टाइट डिब्बे में या एयर टाइट कंटेनर में रखे, तो अपने फ्रिज में इसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, जब ही इसने आप 8 से 12 महीने तक चला सका है। और पकाने से पहले इसको डिफ्रोज जरूर कर लें, ये नहीं कि आप काट दें उसमें बना सका है। डिब्बा बंदी करने के लिए मशरूम को नमक के पानी में उबाल के या टीन या गिलास के जार में रखना बहुत जरूरी है। प्रेशर कंटेनर में भी आप रख सके हैं 10 से 15 मिनट प्रोसेस करके, सेल्फ लाइफ इसका 1 साल तक ज्यादा आप बढ़ा सके हैं। बाजार में बिक्री के लिए अच्छा विकल्प है कि आप इसे प्रेशर कंटेनर में भर के 10 से 15 मिनट प्रोसेस करके रख लें, और अचार या पैकिंग जो करनी है जैसे सिरका नमक मसाले में डालकर बनाया जा सके है। इसका इस तरह के फ्रिज में रख के सेल्फ लाइफ इसका कई महीनों तक बढ़ा सके है। पाउडर बनाना, सॉस बनाना, स्नैक्स बनाना, इस प्रकार की चीजों में भी ये प्रयोग बाद में करी जा सके है।
0: भाई देखो, एक बात का जरूर ध्यान कर लें, आपने फ्रिज में रखने की बात करी तो भाई इसने जो है ना पॉलिथीन के बैग में डाल के ना रखें, क्योंकि शौत्रीवान होके है कि पॉलिथीन का जो बैग जो है वो इसमें नमी वो बनी रह जाएगी, फिर खराब होने की संभावना है।
1: एयर टाइट डिब्बन बनना पड़ेगा,
0: या तो एयर टाइट डिब्बन भर लें, नहीं तो फिर एक इसका दूसरा जो है ये काम आप कर सकें कि पेपर बैग में इसने जो है ना यानी किसी भी पेपर में लपेट के फिर फ्रिज में धर लें, मतलब पॉलिथीन बैग में डाल के ना धरें, ताकि क्योंकि ना फिर वो नमी इसे खराब कर देगी।
1: और मशरूम प्रसंस्करण के यूनिट लगाने के भी बहुत फायदे हैं, छोटे स्तर पर घरेलू स्तर से शुरू किया जा सके है। सरकारी सब्सिडी जो स्कीम है इसके लिए उपलब्ध है, लागत छोटी यूनिट में 5 से 10 लाख तक है और बड़ी यूनिट में से थोड़ी सी ज्यादा लागत आओगी। और मुनाफा ये होगा कि सूखे मशरूम या वो जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनकी अच्छी डिमांड बाजार में है, और आप बाद में से अच्छे भाव में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। और इसके लिए जो टिप्स हैं जो आप इसमें जरूरी चीजें हैं, हमेशा ताजे और अच्छे क्वालिटी के मशरूम का

0: इस्तेमाल करें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, बैक्टीरिया से बचाव करना इसका बहुत जरूरी है। पैकेजिंग अच्छी तरह से हो, यानी एयर टाइट हो, बाजार या लोकल मार्केट में ऑनलाइन या होटल पर या एक्सपोर्ट बोर्ड भी से आप कर सके हैं। छोटी छोटी बोतलों का ध्यान रख के और इसका अच्छी तरह प्रोसेसिंग करके आप मशरूम न रख सके हैं और इसमें अच्छा आप बहन भाई लाभ ले सके हैं।
1: बिल्कुल भाई, देखो भैया यूँ कहें कि ये थोड़ी सी नाजुक खेती है, तो मुंह नहीं कि आपने लगा दी फिर मान लीजिए 2 दिन भी आपने काट दिए भी संभाल नहीं पाए तो नुकसान ना उनका जो है अंदेशा वो बढ़ जाएगा। बातचीत जारी रखेंगे, पहले सुनाऊंगे रागनी, सुनी भाई सुनील दुजानी और साथियों की आवाज में।

0: सुना आपने सुनील दुजानी और साथियों थे और सावित्री बहन अपन बात ये कर रहे थे कि सहायक धंधे किसान भाई के करें जिसमें अपन मशरूम का भी जिक्र करते हैं और बहुत सारे धंधे हैं और एक जो एडवांस तकनीक की थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ड्रोन जो है आप उसका प्रयोग भी खेती में कर सकें। सरकार उस पर बड़ा जोर दे रही है, प्रशिक्षण भी जो है आपने दे रही है, तो उसके फायदे ये रहेंगे कि भाई देखो मान ली छिड़काव की बात करें सावित्री बहन, तो उसमें मतलब एक एकड़ में एक किले में छिड़काव जो हो लगभग 15 मिनट में काट दे और उस तरह से छिड़काव करेंगे तो घंटे भर का काम हो जाए।
1: बिल्कुल राजेंद्र भाई, ड्रोन आज की आधुनिक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। किसानों का समय बचाना, मेहनत, पानी, हवा, दवाओं की बचत करना, खासतौर पर बड़े खेत वाले किसान, मशरूम उत्पादक जो भाई है ना, उनमें भी बहुत काम आ रहा है ड्रोन। हॉर्टिकल्चर फार्म्स के लिए बहुत उपयोगी सहायक सिद्ध हो रहा है। कीटनाशक और दवाइयों का छिड़काव कम टाइम में हो जाए, कम खर्चा में हो जाए। एक एक ड्रोन एक एकड़ खेत में 5 से 10 मिनट में स्प्रे कर दे है, तो समय की बचत होगी इसमें। और पारंपरिक तरीके की तुलना में 30 से 50% तक दवा कम लगेगी, फसल पर समान रूप से छिड़काव होगा, कम बर्बादी होगी चीजों की, और जो फसल की निगरानी रखने में भी अपना काम आवे।
0: बिल्कुल, तो भाई देखो सारे भाई तो जो है ड्रोन खरीद तो नहीं पाते क्योंकि इसके, लेकिन सब्सिडी की बात करें तो 4 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है। 8-9 लाख का अगर है तो मान लिया यार भाई आपने जो उसमें 7 लाख मिल गए तो बड़ा सारा लग जाए, तो आप इसमें क्रैप ले सके हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर जो है उड़ते ले सके हैं, या किसान भाई जो है मिल्की से खरीद लें क्योंकि महंगा सिस्टम है, बेयर प्रयोग में ले आओ तो उसके लिए आपने इसका प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा। और सावित्री बहन देखो कार्यक्रम किसान वाणी का तो टेम हो चले है, थोड़ी देर में हमारे गांव में फिर मिलेंगे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम महारेखाओं का। आइए

सुनते हैं भारेगांव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार विषय पर चर्चा।

0: कार्यक्रम आरेगा में एक बार फिर बहन भैया का स्वागत कर रहे हैं आपकी बहन सावित्री।
1: मैं हूं आपकी एल राजेंद्र दून। और देखो भाई, हमारे गांव में पहुंच गए हैं, सारी बात आप बतलाओगे, सुख दुख साझे करेंगे और गर्भित की बतलाओगे, मोहल्ले की, परिवार की, सारी बात आप करेंगे। कोशिश ये करें कि भाई सारी जानकारी जो है वो सटीक जानकारी भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल राजेंद्र भाई, देखे बात करांगे, बहुत सारी स्कीमें सरकार द्वारा टेम टेम पर चलाई जावे हैं और गरीबों के उत्थान के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 15 स्तरीय कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं, तो ये स्कीमें चलाई गई इनका लाभ किस तरह बहन भाई ले, इस पर अपन बातचीत करेंगे।
1: बिल्कुल, देखो सावित्री बहन, बात यह है कि भाई सरकार योजना तो बहुत सारी चला है, लेकिन वो धरातल पे पहुंचने में थोड़ा सा जो जिन आदमियों ने मतलब उसकी जरूरत है, वास्तव में जिन बहन भैया ने उसकी जरूरत है, तो कोशिश यह करें उन तक योजना ये पहुंचे, कि योजना तो बहुत सारी है सरकार की, लेकिन वो ग्रास रूट पर पहुंचने में जो टाइम लग गए है ना, और कई बार तो पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि चलो देर से फिर पहुंच जाए तो भी कोई बात नहीं। तो इस खातर में देखो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हम भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि भाई देखो जो भाई इस बारे सक्षम है या जिनके पास ये जानकारी पहुंच जाए, जो भाई पढ़े लिखे हैं, क्योंकि देखो सावित्री बहन बात यह है कि भाई अगर हम खासकर गांव की बात करें तो सारे बहन भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और वास्तव में उन लोगों को उन योजनाओं की ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसमें भाई देखो एक काम आप ये कर सकें कि भाई मान लिया पंचायत के माध्यम से, या फिर आपने कोई ग्रुप बना रखे है उसके माध्यम से, या जो हमारे युवा भाई बहन है वो एक तरीके से इस मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभा सके हैं, क्योंकि जो हमारे अनपढ़ भाई बहन है उन्हें इस चीजों का पता नहीं है, और जब भी कोई योजना आवे तो भाई देखो नू कहेंगे भैया तक के भाई आप जिन लोगों को जरूरत है उन तक यह चीज पहुंचा दें, चाहे तो आप पंचायत के माध्यम से पहुंचावें या फिर कोई कार्यक्रम करके, जिस तरह सरकार भी कोशिश करे कि भी मान ले नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या फिर और भी बहुत सारे जो है संचार के साधनों से हम भी कोशिश करे हैं। तो क्योंकि जब तक सावित्री बहन योजना जो है सही आदमी तक, सही बहन भाई तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर वो जो है ना वो उसके सफल होने के चांस बहुत कम है।
0: बिल्कुल राजेंद्र भाई, देखो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जिन पर जाकर भाई उनका पता कर सके हैं, हमारे जो आपकी बात सही है, जो कम पढ़े लिखे बहन भाई हैं उन तक योजना नहीं पहुंच पाती, और योजना पहुंच भी गई ना उनका सही से लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि सही से जब वो अप्लाई करने जाओ तो अप्लाई नहीं कर पाते, उनके पास पूरे कागज नहीं पाते योजना के लिए। देखो हर गाँव में CSC सेंटर खुले हुए हैं, और जाके भी आप टेम पे पता कर सके हैं भी कौन कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है गरीबों के उत्थान के लिए, निम्न वर्ग के लोगों के लिए, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका भाई फायदा उठा सके हैं, और हमारी जो ग्रामीण बहने हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर योजनाएं चलाई जावे हैं, तो जो योजनाएं चलाई जाए उनका फायदा उठा सके हैं। CSC सेंटर तक आप जुड़े रहें, कई बार CSC सेंटर वाले भी भाइयों ने ग्रुप बना रखे हुए हैं, गांव के मोबाइल नंबर उनमें जोड़े हुए हैं, तो उनमें जाकर अपना जो घर में पढ़ा लिखा जो अपना घर का सदस्य है उसका नंबर आप जुड़वा दें, जब भी कोई स्कीम आएगी तो उसका लाभ आपके द्वारा पहुंच जाए, और जब भी आप अप्लाई करने जावे तो पूरे कागज आप लेकर जाओ, दूरे कागज ना लेकर जाओ। कई बार बहन भाई अप्लाई कर दे उसमें अपना फोन नंबर देना भूल जाए, तो उसके आपके पास कोई सूचना उसकी दोबारा नहीं आती कि आपने इसमें के दे दिया के नहीं दिया, इसका लाभ किस तरह आप ले पाओगे, आपका फोन नंबर, आपका मेल ID अच्छी तरह दे, क्योंकि राजेंद्र भाई कई बार कई सूचना मेल ID के द्वारा सरकार भेजे है, तो वो भी बहुत जरूरी है, और एक घर में कौन कौन पढ़ा लिखा बहन भाई जरूर हो है उसके घर के सदस्य ने कि आप फोन नंबर दे जो आपने सारी सूचना जो SMS आया है या कोई सूचना आई वो आपने बता सके, और जब आप उसका लाभ अच्छी तरह उठा पाओगे।
1: बिल्कुल, देखो सावित्री बहन, क्योंकि सरकार तो कोशिश करे कि भी जो हमारे निम्न वर्ग के भाई बहन हैं उन तक वह योजना पहुंच जाए, बहुत सारी चीज है कि देखो योजनाएं तो सबके लिए भी आम है, जिसका जुगाड़ ठीक है योजना तो उस खातर भी आम, जिस तरह हमने जो है ना पिछले प्रोग्राम में ड्रोन का जिक्र किया,
0: बिल्कुल,
1: तो जो सक्षम है योजना तो उनके लिए भी है, लेकिन खासकर जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए ग्रामीण तबके की बात करें तो भाई देखो एक सबसे बड़ा माध्यम आपने बिल्कुल सटीक से ही कहा कि CSC जो है सबसे बड़ा माध्यम है, और फिर भी अगर वहां

0: का आपका जो है पहुंचने का काम नहीं बन पाता, तो जो हमारे युवा बहन भाई उनकी ड्यूटी लगा दें कि भाई, क्योंकि ना बहुत सारे हमारे भाई से हैं जो है रोजगार की तलाश में हैं या इन चीजों का वो ध्यान रखे हैं कि किस टाइम की योजना आनी है, तो उन भाइयों ने कहें कि भाई आप अपने ग्रुप बना के और वो जानकारी उसमें साझा कर लें ताकि किसी भाई बहन का भला हो जाए। और सावित्री बहन घने टाइम बतलाएंगे तो फिर बहन भैया को लाना भी आ जाए, बोले अभी तम तो बतला बैठ जाओ तो बोले फिर हमारे मनोरंजन का ध्यान नहीं रखते,
1: तो सुनेंगे
0: रागनी आजाद खांडा खेड़ी और साथियों की आवाज में।

Zadde materi, zadde materi, gel thara, or gam.

0: दादा ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: ये तो अपने सुना संदेश, और उससे पहले आप सुन रहे थे आजाद खान रखेड़ी और साथियों थी। और सरती प्राण अपन जिक्र ये कर रहा था कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा भाइयों बतलावांगे।
4: बिल्कुल राजेंद्र भाई, तो यो कार्यक्रम है अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए चला जावे है। गरीबों के लिए स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है 15 सूत्रीय कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम 2006 से शुरू हुआ था, विभिन्न योजनाओं को एकीकृत समय कराया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां, रोजगार में अल्पसंख्यकों को समान अवसर देना, गरीबों के लिए स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार बढ़ाना, बुनियादी ढांचा और सामाजिक न्याय बढ़ाना।
3: बिल्कुल, देखो इसमें अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो इसका काम ये रहेगा स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार, ताकि वो जो है ना अपना खुद का काम भी कर ले, इस ढंग तक उन्हें तैयार कराया जाए, उसमें मदद करी जाए। और इसमें जो है कई सारी योजनाएं हैं, जिस तरह मुद्रा योजना है, बिना गारंटी के जो है छोटे लोन वो आपने उपलब्ध करा दे हैं। एक

0: स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो एससी एसटी की जो महिला हैं वो जो काम करना चाहूँ तो उन खातिर ये बड़ा लोन भी है। एक इसमें ये है कि बोले सीखो और कमाओ, यानी स्किल ट्रेनिंग और रोजगार, के पहले तो भाई सरकार आपने ट्रेनिंग देगी और उसके बाद जो है रोजगार आप अपना चला सके हैं। और गरीब नवाज कौशल विकास जो है, यानी गरीब लोग जो हैं उन खातर भाई बहुत सारी योजनाएं हैं कि आपने जो है पीछे से भी आपकी मदद करेगी और रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराओगी।
1: बिल्कुल
0: और आगे देखो जिस तरह बात करें कि सावित्री बहन बहुत सारी चीजें हैं कि भी लोन आपने दे दिया, सब्सिडी दे दी, और फिर जो आपके उत्पाद जो हैं वो बिकवाने में सहायता है, बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो कहने का मतलब भाई गरीबी रेखा तक जो लोग नीचे हैं उनके लिए खासकर ये योजनाएं हैं।
1: बिल्कुल राजेंद्र भाई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी है इसमें, दीन दयाल अंत्योदय योजना भी इसमें शामिल है। गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, सब्सिडी देना, प्रशिक्षण देना इसके अंदर आवे हैं। और अन्य जो संबंधित सूत्र है उनकी बात कर लें, जैसे शिक्षा है, छात्रवृत्ति है, ऋण और आर्थिक सहायता है, बुनियादी सुविधाएं हैं, घर बिजली पानी भी देना, कौशल विकास रोजगार है गरीबों के लिए, जो और लाभकारी योजना है उनकी भी अपन बात करा। नया उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना है PMEGP, मुद्रा लोन, छोटा बिजनेस, दुकान, हस्तशिल्प, मशरूम आदि की यूनिट लगाने के लिए, NRLM दे महिला सहायता समूह SHG के जरिए स्वरोजगार योजना, NMDFC लोन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सस्ता ऋण योजना, मनरेगा योजना, मजदूरी योजना जो 100 दिन का काम है इसमें दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ट्रेनिंग जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत आवे हैं। और आवेदन किस तरह करें भाई?
0: इस पे बात ये करेंगे कि भाई देखो मुद्रा की बात करें तो बैंक की वेबसाइट पर जाके जो है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन वो है वो करा सके हैं। छात्रवृत्ति की बात करें तो ये भी स्कॉलरशिप .gov.in में जाके आप उसकी कर सके हैं, यानी जो जो भी आप करेंगे तो इनकी सबकी वेबसाइट है, आप इस पर जाके बात कर सके हैं। या फिर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो हैं, या जो बैंक के अधिकारी हैं, या KYK में हैं, या CSE सेंटर पर भी आप संपर्क कर सके हैं,
1: हाँ, KVK में भी दी जावा है।
0: बिल्कुल दे सके हैं आप। इसमें जो है आपका जरूरत पड़ेगी, आपका आधार है या बैंक खाता भी आपने देना है, जाति प्रमाण पत्र भी आपका इसमें लगेगा, और प्रोजेक्ट
1: प्रोजेक्ट की रिपोर्ट
0: रिपोर्ट।
1: जरूरी है इसके
0: हाँ,
1: लिए।
0: क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं कि भी जो भी आप अपना उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके साथ जरूर लगा दें।
1: और जिस तरह अपन पिछले अपने विषय की बात करी थी, मशरूम को छोटा उद्योग लगाना है, तो इसके लिए भी मुद्रा लोन लेना एक अच्छा विकल्प है। और यह बहुत सारी योजनाएं जो सरकार देवे हैं अपने अल्पसंख्यक बहन भाइयों के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए अपने उचित जगह पर जानकारी लेनी पड़ेगी, CSE सेंटर पर जाना पड़ेगा, अच्छी जगह सही जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, स्कॉलरशिप .gov.in हो गया। तो इस तरह की जो साइट सही है ना, सही साइट का आप यूज करें और उसमें सारे अपने दस्तावेज लगा के उसके अंदर तब आप उसमें अप्लाई कर सके हैं।
0: बिल्कुल, देखो सावित्रीबान हमने शुरू में जिक्र किया था कि भाई योजनाएं तो बहुत सारी हैं, गरीब बहन भाई खातर बहुत सारी योजनाएं हैं, सब्सिडी भी सरकार दे है, सहायता भी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग भी चलाई जाए हैं। तो जिन भी बहन भैया ने जो है भाई आपको नहीं यूं लगता हो कि भाई आपने कोई काम धंधा शुरू करना है, कोई अपना रोजगार शुरू करना है, तो आप जो है इन अधिकारियों से संपर्क कर सके हैं। जिस तरह जिला कल्याण अधिकारी बताया, बैंक के जो अधिकारी हैं उनके पास भी बहुत सारी योजनाएं आवे हैं। तो उसमें देखो एक जो बात है सावित्री बाण, हम ये कहते रहे हैं कि भाई आप जो अकेले नहीं कर सकते तो आप ग्रुप बना के, जिस तरह आपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी, स्वयं सहायता समूह जो है उनके थ्रू भी आप ये काम कर सकें।
1: और जिस तरह मैं बात करा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो SC ST के द्वार हमारे 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 2.5 लाख तक सब्सिडी इन्हें मिल जाए हैं, तो इसलिए जो भी अप्लाई करेंगे उसके लिए पात्रता, जो जो पात्रता है वो भाइयों ने बता दिया है, 18 वर्ष से ऊपर और भारत का नागरिक तो होना चाहिए, न्यूनतम पढ़ाई समय 8वीं पास हो, उस मामले में उसकी भी छूट दी गई है, नई यूनिट या पहले से चल रही है उसका अपना विवरण देना पड़ेगा, जो SHG ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सहकारी समिति है, वो उनके द्वारा भी आप आवेदन कर सके हैं, विशेष श्रेणी यानी महिला SC ST अल्पसंख्यक दिव्यांग को भी अतिरिक्त लाभ इसमें मिले हैं। और जिस तरह मैं बात करा कि एक यूनिट अपना मशरूम की लगानी है, उसके लिए उपयुक्त है मशरूम की खेती, प्रसंस्करण, ड्राई पाउडर, पैकेजिंग करना, इस तरह के लिए जब यूनिट लगाओगे तो आपने उसकी सारी जानकारी उसमें देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट की लागत 5 से 20 लाख तक आसानी से मंजूरी इसमें हो जाए।
0: भाई देखो सावित्री बहन यही कह रहे थे कि भाई अगर आप अकेले नहीं कर

0: सकते, तो बहुत से हमारी जो महिलाएं बहन हैं वो इकट्ठे होके भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इकट्ठे होके समूह बना के करोगे तो उसमें लोन भी आपका बड़ा हो जाएगा, और उसमें होगा कि भाई आप ने इकट्ठा ही रोजगार भी मिल जाएगा। और फिर देखो हुनर की बात करें तो सावित्री बहन ऐसे हमारी बहनें जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं कि वो घर में सिलाई भी करे हैं, कढ़ाई का काम भी है, या फिर और बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट बना ले हैं।
1: हाँ, साबर सर्फ के अब उद्योग लगा सको, छोटा उद्योग के तौर पर लगा सको, घर में जो चीज प्रयोग होने वाली चीजें उनका उद्योग लगा सको, हो
0: बिल्कुल
1: अचार चटनी मुरब्बा इसका उद्योग आप लगा सको हो।
0: बिल्कुल, देखो सावित्री बहन हमारी बहन जो है वो जमींदारा जो करे हैं, मान लो भाई हर घर में जो एक आधी भैंस, क्योंकि जमींदार भाई हैं तो वो पालते रहे,
1: बिल्कुल
0: तो आप दूध के प्रोडक्ट भी बहुत सारे बना सको। देखो हमारी बहने बहुत सी सी हैं जो भैंस पाल रहे हैं और दूध का उनका बहुत अच्छा काम है, तो हमारी बहन भी नु कहेंगे कि भाई देखो आप सीधा दूध बेचने की बजाय आप थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग ले लें तो दूध, जिस तरह मान लिया आपने पनीर बनाया, खोया बनाया, बर्फी बनाई, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं कि जिनकी बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है, और जो आप घर में बनाओगे उसमें शुद्धता की भी गारंटी हो जाए सावित्री बहन, क्योंकि आपने उस खातर फिर बार भी उसकी मार्केटिंग करने खातर बार जाने की जरूरत नहीं है
1: बिल्कुल,
0: उतना।
1: थोड़े दिन के बाद आपका घर से ही सारा सामान उठाया जाएगा, अच्छे दामों पर उठाया जाएगा,
0: बिल्कुल देखो इसमें कोई शक नहीं है सावित्री बहन के जो आजकल जो है ना
1: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है,
0: बहुत बड़ा
1: बिल्कुल
0: प्लेटफॉर्म है।
1: उस
0: हाँ
1: पर
0: वो
1: रजिस्ट्रेशन आप कर सके हैं।
0: बिल्कुल, और देखो इस तरीके का काम करोगे तो आपने दाम भी ज्यादा मिलेंगे, और सावित्री बहन देखो आदमी 150 रुपये नहीं देखता आजकल, देखें कि भी आपकी जो है ना हेल्थ अवेयरनेस की बात करें,
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य के प्रति आदमी को
1: जागरूकता ज्यादा है।
0: जागरूकता ज्यादा है और होनी भी चाहिए। और बातचीत जारी रखेंगे, एक बार मनोरंजन फिर तक करा दें तो सुनेंगे मास्टर रणबीर बड़ोवासनिया और नीलम चौधरी की आवाज में यह रागनी।

0: तो ये तो सुना है आपने रणबीर नीलम चौधरी और साथियों ताई और सावित्री बन देखो बतलान ने जीत और भी कर रहा था
1: पर गड़े की सुई सारा करी है। इसी के साथ अपनी बन सावित्री बुगालिया ने
0: और अपने भाई राजेंद्र दून ने दी इजाजत
1: सारे बन भाइया ने राम राम, राम।

0: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी कार्यक्रम हमारे गांव एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओ, अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से ही किया जा रहा है।
1: परिक्रमा नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा लेकर हाजिर है आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार। दोस्तों, आज की परिक्रमा में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश, वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स चैंपियनशिप 55 प्लस कैटेगरी के लिए हिसार के योगेश कोहली को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है, वे इस खेल प्रतियोगिता को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए आज के अंक में। आकाशवाणी के एक नियमित श्रोता से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे आज के श्रोता को आकाशवाणी के इतर कोई अन्य मनोरंजन का माध्यम नहीं भाता, इसके अलावा अन्य गतिविधियों की भी आपको देंगे जानकारी। तो आइए आपको लिए चलते हैं परिक्रमा के सफर पर। दोस्तों, आज देश उन्नति की नई दिशा तय कर रहा है। आज न केवल सपने देखे जा रहे हैं, बल्कि उन सपनों में रंग भी भरे जा रहे हैं। उम्मीदों को संवारने वाले इस दौर पर बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: साथियों, 12 वर्षों के इस सेवा काल की एक और बड़ी सिद्धि रही है। ये सिद्धि है निराशा से निकलकर आशा आकांक्षा सबसे भरे भारत का निर्माण। साथियों, नक्सल कहीं और होगा, लेकिन घटनाओं की पीड़ा हिंदुस्तान के हर कोने में होती थी, और जिस समय नक्सल खत्म होने की बातें आने लगी तो विश्वास सिर्फ नक्सल इलाके का नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जगने लगा। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जो कांग्रेस सरकार चली, उससे नाराजगी केवल गवर्नेंस की नहीं थी, तब देश की निराशा इससे कहीं अधिक थी। देश उम्मीद खो चुका था, लोगों को लगता था कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बदल ही नहीं सकता। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत ने उसी निराशा को आशा में बदला है। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा संतोष है। आज हर किसी को यह लगता है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ये हो सकता है। वो दिन चले गए जब एक ही बात सुनाई देती थी, कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। वो जमाना चला गया, आज ये होकर रहेगा। ये जो भाव आया है, यही भारत की असली सिद्धि है और यही रियल पावर है। चुनौतियों तो आज भी बहुत है और हमेशा रहेगी, और चुनौतियां बहुरूपिया होती हैं, वो नए नए अवतार में सामने आती रहती है। अरे आएगी, जिस रूप में आएगी जंग उससे भी लड़ेंगे जी, और जीत भी लेंगे, लेकिन ये हो सकता है और हम ये करके रहेंगे। जब इस भाव से देश आगे बढ़ता है तब सपने पूरे होते हैं। साथियों, यहां भारत के 100 से ज्यादा जिलों और 500 से ज्यादा ब्लॉक्स की चर्चा करना चाहूंगा। ये विकास के हर पैरामीटर पर पीछे छूट गए थे, और पहले की सरकार ने इन पर पिछड़ा होने का ठप्पा लगा दिया।

था, ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये तो बैकवर्ड इलाका है। हमने देश के इस बहुत बड़े क्षेत्र को पिछड़ेपन की निराशा से बाहर निकाला।

0: बहुत बारीकी से काम शुरू किया। कोई इस दृष्टि में ये तीन पहलू है, पहले उसमें से बाहर निकलो, यहां छह पहलू है, पहले इसमें से बाहर निकलो। बड़ा फोकस वे में काम शुरू किया। आज ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स राज्य की ओवरऑल ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करने लगे हैं, जो पहले ग्रोथ को पीछे खींचते थे। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी आबादी गरीब थी, अभाव में थी। बीते वर्षों में 25 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। तो इसमें इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से साप्ताहिक कार्यक्रम परिक्रमा और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विवेक कुमार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं कव्वाली का पुट लिए हुए ये खूबसूरत गीत।
2: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ, बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

चाहते तू पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना सच कदा मन्ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना सभी को गले लगाना मोहब्बत में लुट जाना मोहब्बत वो खजाना है कभी जो कम नहीं होता है जिसके पास ये दौलत उसे

0: बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे,
1: बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे।

0: दोस्तों, हरियाणा की खेलों में कुछ ऐसी पहचान है कि खेल कोई भी हो, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, यहाँ के खिलाड़ी विश्व पटल पर अपना परचम लहरा ही देते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स चैंपियनशिप 55 प्लस कैटेगरी के लिए हिसार के योगेश कोहली को टीम इंडिया के कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए कहा,
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडियन टेनिस एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि टीम का कैप्टन बनाया, और सभी प्लेयर्स, जहां तक तैयारी का सवाल है, सभी प्लेयर्स जोरों शोरों से प्रैक्टिस पे लगे हैं। अब भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो उससे कुछ देर पहले ही मैं अपनी प्रैक्टिस से वापस आया हूं, और सबका एक ही लक्ष्य है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हम दे पाएं। और क्योंकि मास्टर्स वी आर प्लेइंग इन 55 प्लस कैटेगरी, तो सबकी, ना केवल मेरी, सभी प्लेयर्स की, सभी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, सबकी ये कोशिश है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और अपने देश, अपने स्टेट और अपने सिटी हिसार का नाम वर्ल्ड मैप पे रोशन करें। किसी भी टेनिस टीम में 4 मेंबर होते हैं वर्ल्ड वाइड, और 4 ही मेंबर हैं, मेरे अलावा 3 मेरे और मेंबर्स हैं इस टीम के, और कहाँ तक जाएगा इस चीज का तो मैं यही कहूंगा कि सब तैयारियों में व्यस्त हैं और सब प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि अपना 100% दे पाएं।
0: आइए आपको मिलवाते हैं आकाशवाणी के एक ऐसे नियमित श्रोता से जो बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप पेशे से दर्जी हैं, जो कि आपका खानदानी कार्य है। ऐसे में जब कपड़े को आपके हुनरमंद हाथ आकार दे रहे होते हैं, वहीं आकाशवाणी की स्वर लहरियां आपके दुकान पर रखे रेडियो सेट के माध्यम से माहौल में संगीत की मिश्री घोल रही होती है। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से आकाशवाणी हिसार के नियमित श्रोता साबिर हुसैन मिरासी।
2: हमारे

0: टाटा जी थे, तो उस जमाने में जो आकाशवाणी भारती तो हिंदी में ट्रांसफर हुए एफ एम और जो कस्टमर था
1: जी,
0: तो हिंदी भारती सुनते थे हमारे पास था। वो सेवा काम करते लड़के में काम करता हूँ, तो शाम के टाइम जो हम लोग खेल सीखता थे तो खासतौर पर हमारे बुजुर्ग लोग थे वो रेडियो का प्रोग्राम करते दिल्ली से
1: जी,
0: दिल्ली से रेल आगे प्रोग्राम करते हम सुनते थे, तो हम जो पढ़ता थे जो खेल सकते प्रोग्राम से हिंदी भारती सुनते थे गाने सुनते। तो उस जमाने में जो रेडियो थी बड़ा रेडियो था बैठने का था हमारे भी, तो काफी देर में गर्म होता था, चलने के बाद भी दो मिनटों को वो लाइट जाने के बाद काम करता था। उसके बाद में फिर जो है चार पंद्रह रेडियो आगे कितना सुन प्रोग्राम सुन रहे पढ़ते रहे सुन रहे, फिर अपने आगे बढ़ते थे। अब हम जो आगे बढ़ गए तो फिर प्रोग्राम सुन रहे धीरे धीरे धीरे और ये सब क्योंकि आज ये समय आ गया और भी जाएगी तो
1: बिल्कुल। और साबिर हुसैन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप टेलरिंग करते हैं, कपड़े सिलते हैं, तो ये कार्य आज भी कर रहे हैं?
0: हाँ जी, ये हमारा खानदानी काम है, सिलाई तो हमारे बुजुर्ग लोग यही काम तो मैं कर रहा हूँ और काम करता हूँ। अभी मैं फिलहाल दुकान पे आप दिन से बात दुकान पे काम कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और दुकान पे काम करते हुए लगातार जो है रेडियो चलता रहता होगा।
0: जी हाँ जी।
1: परिवार में कौन कौन लोग हैं साबिर जी?
0: देखिए जी, फिलहाल परिवार में जो एक बेटा है, पुत्र वधु है, दो पोते पोतिया है और माशाल्लाह पूरा परिवार है, पांच बेटियां और आजकल जो छुट्टी के दिन चल रहे हैं तो पांच बेटी आ रही है, नवासे नवासे आ रही है, मतलब माशाल्लाह खासा घर में एक मेले का माहौल बन रहा है। मतलब
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: हाँ, किस बारे छुट्टी के दिन सब आने के आ रहे हैं सवाल।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ छुट्टियों के समय तो है, यही पूरे वर्ष में एक समय मिलता है बच्चों को भी और परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। तो साबिर जी ये भी बताएं कि जिस जमाने से आप रेडियो सुन रहे हैं, आप बहुत पुराने लिसनर हैं, उस दौर से लेके आज में क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या कुछ बदल गया?
0: बहुत कुछ बदल गया जी। उस जमाने में जब रेडियो था तो रेडियो की इतनी आवाज साफ नहीं हुआ करती थी, तो रेडियो कभी अनुसार ऐसे घुमाते थे, कभी ऐसे घुमाते थे, कभी मौसम की तरह वाले बोलते हुए आवाज घड़ा होगी तो प्रोग्राम तो नहीं सुन पाते। आज जो तकनीक इतनी बढ़ गई थे, हम जो जब से ये ऐप आई है सबसे बहुत ही क्लियर थी, बहुत साफ सुथरे आवाज सभी मिलती है और जो गाड़ी में भी ऐसे मुझे तक गया अगर की पहले तो रेडियो घर तक ही नहीं था, अब तो रेडियो प्रॉपर गाड़ी मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे आप रेडियो ना पहुंचा हो, तो मान लीजिए रेडियो आपके लिए हर जगह मौजूद है। अब ये और बात की 24 घंटे मौजूद है, किसी भी चैनल को आप कहीं भी जाकर सुन सकते हो और बहुत अच्छी क्वालिटी आवाज आती है, बहुत आवाज परेशान सही मिलते हैं सुनने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले से तकनीकी तौर पर रेडियो बहुत बदल गया है, इसकी गुणवत्ता में बहुत बदलाव आया है और बेहतर प्रसारण जो है तमाम श्रोताओं को सुदूर क्षेत्रों में बैठे उन्हें भी मिल रहा है। तो साबिर हुसैन जी, आप अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, किस तरीके का क्षेत्र है आपका घिटूरनी?
0: देखिए जी, हमारा जो घिटूरनी गांव जो है ये हरोली गुड़गांव रोड पे पड़ता है
1: जी।
0: हमारे यहाँ से जो गुड़गांव जो है करीब करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी हमारे गाँव से जो हाँ। हमारा गांव जो ना तो गांव ही कह सकते हो ना पूरा कस्बा कह सकते हो, क्योंकि हमारे गांव में पूरी फैसिलिटी है, हर चीज की मेट्रो स्टेशन भी है, बच्चेवा भी है, बैंक की सेवा भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, हॉस्पिटल भी है, मतलब कोई भी मतलब शोरूम भी है, मतलब हर किस्म की सुविधा है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सुविधा है हमारे यहाँ, मतलब हमारे गांव नाम से ही गांव मतलब एक किस्म का शहर मान लो, हर चीज की वहाँ फैसिलिटी है और किसी वहाँ उपलब्ध है।
1: बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से विकसित क्षेत्र है आपका, किसी भी कोई भी जरूरत की चीज आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाती है जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अपने क्षेत्र के बारे में। तो साबिर हुसैन जी, आज के जो युवा साथी हैं या आज के जो बच्चे हैं, उनके सामने मनोरंजन के बहुत से माध्यम हैं, आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, मोबाइल फोन हाथ

0: में है, तो ऐसे दौर में रेडियो सुने आज के युवा साथी, आज के बच्चे, उन्हें किस तरीके के फायदे हो सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखो जी, मैं तो अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ कि रेडियो सुनो जो मोबाइल में है। हाँ ठीक मानते हैं कि आज की जरूरत है, लेकिन लोग बच्चे भी इसमें ज्यादा इसमें इंटरफेयर करते हैं, मोबाइल में ज्यादा लग जाते हैं। आज छोटा बच्चा 2-3 साल से लेकर सभी से बच्चे से लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं पसंद तो ये कहता हूँ अब जो बात अपने रेडियो के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। आप काम भी कर सकते हैं, आप जानकारी दे सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं और अपना नाम भी सुन सकते हैं। आज तो नाम सुनने की बहुत सुविधा है। आप जब तो हमारे जमाने में क्या था, किसी दिन तक ये था कि लेटर डालो, फिर लेटर का इंतजार करो, अब चिट्ठी आई करने, अब तो उधर आपने मेल किया, उधर आपने मैसेज कर दिया, उधर आप नाम भी सुने, फरमाश सुन ली, तो अब तो वक्त की बात है। लेकिन फिर भी युवा लोग जो है सुनते तो नहीं सुनी, लेकिन वो आकाशवाणी की वो चैनल सुनते हैं जो प्राइवेट चैनल है, ना कि जो हमारे प्रसार भारती के जो है, उन चैनल को नहीं सुन पाते। उनका कारण क्या है कि उनमें जो और किस्म के प्रोग्राम है और उनमें प्रोग्राम जो उनके हिसाब के प्रोग्राम है, हर किस्म के वो गाने हैं जो वो सुनते हैं। लेकिन हम जो बुजुर्ग लोग हमें तो अपने आकाशवाणी के अपने साधारण चैनल जो आकाश निस्तार है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, दिल्ली के अंदर चैनल भी भारतीय है, हम तो ये सुनते बाकी हमारे बच्चे लोग भी मतलब ज्यादा कदर कभी उनके नाम आते हैं सुनने में तो कहते पापा हमारा नाम नहीं आ, बाबा हमारा नाम नहीं आ गए तो है, बल्कि फिर भी मतलब जो इतना लगाव नहीं रखते, नहीं तस्वीर जो लगाव नहीं रखते रेडियो से, क्योंकि हर एक गाजीपुर में ऐसे है, लेकिन वो चैनल सुनते हैं जो प्राइवेट चैनल है,
0: जो प्राइवेट चैनल है,
1: किसी चैनल है या और कोई है, अपने जो प्रसार भारतीय जो भारतीय अपने जो गवर्नमेंट कंट्रोल चैनल है उनको वो कम यूज करते हैं।
0: बिल्कुल, जबकि जो है आकाशवाणी हमेशा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन और बड़ा ही स्वस्थ मनोरंजन देता है, और यहाँ से जो सीख मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो साबिर हुसैन जी, आखिर में जो है तमाम सुनने वाले श्रोता कार्यक्रम परिक्रमा में आपको दूर दूर तक सुन पा रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रेडियो के साथ जुड़े रहिए और बच्चों को प्रेरित कीजिए आकाशवाणी से जुड़ने के लिए, उनके जो प्रोग्राम है उनके साथ मिलाइए सुनिए और लाभान्वित कीजिए, हर चीज की सुविधा रेडियो के सुनने की, हर चीज जानकारी मिलती है, सभी रेडियो सुने और बच्चों को भी वो सुनाने के लिए कहेंगे और आप भी सुने सबके लिए
0: जी।
1: सबका माध्यम के लिए आप काम भी करते, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कभी चौबीस का साफ समझ मिलते हैं, आजकल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी का शहर तक भी मतलब आप आगे नहीं सुन सकते हैं अपने बैठने के घर पर, कोई सी बात नहीं है, तब तक अपने रोशनी तक नहीं होगा कि अब तो आप कहीं का भी कहीं का पूरे वर्ल्ड का कहीं कहीं आप इसमें ऐप खोल दीजिए, सारे चैनल गलती है
0: जी बिल्कुल। तो साबिर हुसैन मिरासी साहब, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रम परिक्रमा में हमसे बातचीत की और अपने जीवन के तमाम अनुभवों को हमसे साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
1: धन्यवाद जी।

0: तो दोस्तों ये थी आज की परिक्रमा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय तमाम गतिविधियों को पिरोकर हाजिर होंगे कार्यक्रम परिक्रमा में। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दें इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। परिक्रमा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: सीने जगत की प्रतिभाओं को आकाशवाणी हिसार का सलाम। सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे।
3: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।
0: आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम सुनिए कहीं भी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, अभी हम सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत कार्यक्रम रहेगा एक फिल्म से। वादियों की खामोशी में जब सुरों की महफिल सजती है तब एक यादगार फिल्म जन्म लेती है। श्रोताओं, आज आपको लेकर चल रहे हैं वर्ष 1964 की एक ऐसी सदाबहार फिल्म की दुनिया में जिसने कश्मीर की वादियों, मधुर संगीत

और खूबसूरत प्रेम कहानी के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। यह फिल्म है कश्मीर की कली। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी संक्षेप में कुछ इस तरह से रही। कहानी में राजीव नाम का एक लड़का, जो अपनी माँ की पसंद से विवाह नहीं करना चाहता और वह कश्मीर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फूल बेचने वाली चंपा से होती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन सामाजिक भेद, पारिवारिक रहस्य और कुछ विरोधी पात्र उनकी राह में बाधाएं खड़ी करते हैं। अंत में कई रहस्यों के खुलने के बाद प्रेम की जीत होती है। इसी फिल्म का पहला नगमा आपकी नजर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुला आकाश एक फिल्म से, और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। श्रोताओं, इस फिल्म ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को देश भर के दर्शकों तक पहुंचाया। डल झील और पहाड़ों के दृश्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। तो श्रोताओं, इस फिल्म से जुड़ी बातें आगे भी जारी रहेंगी। आप सुनिए इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं खुला आकाश के अंतर्गत कार्यक्रम एक फिल्म से। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। इस फिल्म में शमी कपूर जी ने राजीव की भूमिका में और शर्मिला टैगोर जी ने चंपा का किरदार निभाया है। फिल्म में संगीत दिया है ओपी नैयर जी ने, गीतों को आवाज दी है मोहम्मद रफी व आशा भोसले ने। आज भी इस फिल्म का संगीत हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीत में गिना जाता है। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा कश्मीर की कली की इस फिल्म से।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: प्रेम, संगीत और प्रकृति के अद्भुत संगम से सजी यह फिल्म हमें यह एहसास कराती है कि सच्ची भावनाएं और अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। तो श्रोताओं, अभी आप इस फिल्म के गीतों को सुन रहे थे आपके अपने रेडियो साथी रितु, इंद्रजीत और सुषमा डूडी के साथ। अभी दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। प्रतीक्षा के पल हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में

0: विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और

0: उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that the contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: newsonair.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से। आवाजें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से, आवाजें एश किंग और जिगर सरैया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

तेरी अकड़ की रस्ती जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो चीटे पसना पैगी, मेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांस ये टक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। सने चारों खाने चित कर।

0: सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने

0: मैं कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता जीत, आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपने

0: लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से, आवाज ए आर रहमान, श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जानी माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया,

8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो। हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है

जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आरडी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंची

0: गाना।
1: ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई

समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: hey, भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोना का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी हिसार है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। प्रस्तुति रहेगी आनंद शर्मा की। तो सुनिए आकाशवाणी हिसार पर प्रसारित कार्यक्रम हेलो हिसार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 MHz पर। दोस्तों, वक्त है कार्यक्रम हेलो हिसार का। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो हिसार।
1: मानो, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो तोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति त्रिराधा की मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, काफी दिनों पहचान आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: मुझे भी बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे बात करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो प्रजापति जी, क्या करते हैं आप?
1: मानवर, मैं तो सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। घर पे बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक रहते हुए रेडियो और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ, कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। सूचना शिक्षा मनोरंजन भरपूर कार्यक्रम आते हैं और मेरा वक्त जो है रेडियो के साथ में गुजरता है और मैंने अपना साथी रेडियो ही बना रखा है।
0: सेनानिवृत्ति के बाद भी काफी ऊर्जा जो है ना आपने संचय कर रखी है।
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपसे वार्तालाप करके और जो प्रफुल्लित तो गदगद हो जाता है जब हेलो हिसार फोन लगता है और हमारी पसंद के गीत प्रसारित होते हैं।
0: बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: मानवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, महेंद्र कपूर साहब के साथ में लता जी ने गीत गुवाया है। आजा रे मेरे प्यार के राही, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ हेलो हिसार में।
0: ठीक है, सुनिएगा आपकी पसंद का ये नगमा।

0: हेलो हिसार।
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से जी।
0: और बताइए क्या चल रहा है आजकल।
1: अब ये भी है, देखिए बारिश तो इस बार कुछ पता नहीं चल पा रहा है और उसके लिए थोड़ा सा खेती बाड़ी काम भी पिछड़ा हुआ है।
0: बारिश ने तो इस बार धोखा दे दिया।

0: कौन सा गाना आप उम्मीद कर रहे हैं आकाशवाणी हिसार से?
1: सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग। हमारे कुछ मित्र हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेंद्र वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, तुकाराम जी, संतोष वैष्णव जी, मुकेश शर्मा जी, और रामस्वरूप गुप्ता जी, दिनेश देवांगन जी और तमाम साथी जितने भी सुन रहे
0: जिसके
1: हैं।
0: जीवन में इतने मित्र हों वहां सूखा कैसे पड़ सकता है योगेश भाई।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
0: सुनिएगा आपके और आपके सभी मित्रों के लिए फिल्म सावन को आने दो का ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। कृष्ण नगर डिस्ट्रिक्ट है, श्री भूमि आसाम से ताल्लुका है।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मसाला बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, और खास करके मतलब जब फोन अवेल होता है तो एकदम बाकी हमारे तन मन सब खुश हो जाते हैं।
0: बताइए क्या सुनेंगे आज आप आकाशवाणी हिसार से?
1: दो लाइन बोलू मैम, ये सर दो लाइन बोलू।
0: जी
1: यादों के भावर में एक

0: पल हमारा हो,
1: क्या बात है।
0: खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, जब याद करे आप अपने दोस्तों को, उन नामों में बस एक नाम हमारा हो।
1: तो
0: जी,
1: यकीन मानिए आपका नाम सबसे ऊपर है।
0: फिल्म का नाम तो पता नहीं है, लेकिन गाने का बोल ऐसे है, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा, ऐसे करके गाने हैं। दोस्तों को मैं ये याद करता हूँ। पहले
1: जी
0: है हमारे त्रिपुरा से अविनाश जी,
1: जी
0: दिलदार भाई,
1: जी
0: और उसका नाम है श्रीकांत जोशी जी, और अमर सिंह साहू जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और आपके लिए आनंद जी।
1: आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए
0: जी
1: सुनिएगा
0: जी
1: आपकी
0: थैंक
1: पसंद
0: यू।
1: का ये गाना।

0: हेलो हिसार
1: मैं गांव पुनियातक से विनोद जी बोल रहा हूँ जी।
0: जी, तो बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: सोलह सबनम का सुना दीजिए जी, गाने के बोल वो बताता हूँ। तू उठा तो इतनी दूर चली जाऊंगी, सॉरी वो सुना दीजिए जी।
0: ये आपने नोट किए हैं जो आपने कॉपी में देख के बताया है मुझे?
1: हाँ नोट किया था जी, मैं याद कर रहा।
0: तो सुनिएगा विनोद जी, आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो भाई साहब।
1: भैया मैं कोदवा साज छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ भैया।
0: कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया भैया, बहुत मुश्किल से फोन लगा भैया, बहुत दिन बाद लगा, कम से 3-4 महीने बाद।
0: जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं उन्हीं का मजा आता है
1: नहीं वो
0: ना?
1: ठीक है भैया, लेकिन आज मुश्किल से लगे ना भैया।
0: लेकिन अच्छी बात है कि आप आ गए हैं हमारे कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ भैया, सवारी इकट्ठा कर तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए ले जाता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, आप तो पुण्य कमा रहे हैं।
1: सब आप ही लोगों का आशीर्वाद भैया, कुछ कुछ भगवान का भी आशीर्वाद है, सवारियों का आशीर्वाद है।
0: तो कहाँ कहाँ घुमाते हैं आप?
1: अभी 3 तारीख को यहाँ से आया हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ और नेपाल अपना ऋषिकेश द्वार से जनकपुर और सीतामढ़ी वगैरह गया था, मथुरा वृंदावन और प्रयागराज और इधर भी गया था बनारस वगैरह।
0: फिर तो लोग आपको बहुत दुआएं देते होंगे।
1: हाँ अभी अब सब आशीर्वाद देते रहते भैया, ताकि अच्छा भी घुमा दें और अच्छा से व्यवस्था कर दें, तभी पसंद करते हैं भैया सवारी लोग।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं आप। ईश्वर आपके काम में दिन दोनी रात चौगुनी उन्नति करवाए। बताइए आज क्या सुनेंगे आकाशवाणी हिसार
1: आज
0: से?
1: भैया सुंदरी पवन पवन पुरवई।

0: हेलो हिसार।
1: जी शर्मा जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: आप
0: ना
1: आनंद शर्मा जी है ना जी? शर्मा
0: जी, मैं आनंद शर्मा बोल रहा हूँ।
1: जी, मैं आपका बहुत पुराना फैन, लेकिन आपके साथ नाराजगी के साथ।
0: देखिए, नाराजगी अपनों से ही होती है साहब।
1: आप कभी भी हमारा व्हाट्सएप शामिल नहीं करते। गांव पांडु पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल।
0: ये तो आपकी बात गलत है कि मैं आपका नाम कभी शामिल नहीं करता
1: एक बात हो,
0: जी।
1: भूख तो मेरे को 10 रोटियां की है, खान न मिले एक रोटी तो क्या पेट भर जाएगा? है
0: क्या
1: फिर
0: बात है। अब
1: ये
0: तो
1: बताओ
0: देखिए, मैं
1: मेरे।
0: निशब्द और निरुत्तर हो गया हूँ जी। अब मेरे पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। चलिए, आपकी शिकायत जो आगे से नहीं होगी, इस बात का मैं
1: जी मैं
0: आपको
1: बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो आपका बहुत पुराना फैन हूँ, आपकी आवाज का।
0: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बताइए, आज क्या सुनाऊँ आपको
1: शर्मा जी, पहले तो मैं कुछ नाम जोड़ना चाहूंगा।
0: जी।
1: गांव पांडु पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश, तीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर बानिका। और अब फिल्म है जी दीवाना, पुराने फिल्म है शर्मा जी।
0: जी
1: हम तो चलते अपने गांव सबको राम राम, मुकेश की आवाज में।
0: ठीक है, बादल सिंह जी, आपकी पसंद।

0: हेलो हिसार,
1: राम कुमार रिवाड़ बात कर रहा हूँ साधु शहर से। बढ़िया
0: कैसे हैं राम कुमार जी?
1: सर जी, आप कौन बोल रहे सर?
0: मैं आनंद बोल रहा हूँ।
1: आनंद सर जी नमस्कार। सर
0: नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: कामचोर फिल्म का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: ठीक है राम कुमार जी, आपकी पसंद पर सुनिएगा फिल्म कामचोर का ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप
0: बहुत
1: बताइए,
0: बहुत
1: आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताएं।
1: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ सर, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, इसके अलावा और क्या
1: हमारे 8
0: करते
1: लोगों
0: हैं
1: का ग्रुप बना हुआ है
0: जी?
1: जी, उसमें हम 4 गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, एक ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: बहुत अच्छा। हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?

0: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए हैं,
1: जी
0: उसके लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई। और आकाशवाणी और श्रोताओं का साथ ऐसा ही बना रहे, आकाशवाणी निरंतर ऊंचाइयों को छूती रहे और श्रोताओं का साथ आकाशवाणी को मिलेगा, क्योंकि अब आकाशवाणी मोबाइल ऐप से आने लगा है
1: जी
0: जी। उससे मतलब हर राज्य के हर श्रोताओं को हर आकाशवाणी सुनने को मिल जाती है
1: बहुत खूब बहुत
0: जी।
1: खूब। आप
0: और
1: हमारे
0: उसके
1: नियमित
0: साथ में
1: श्रोता
0: आपको
1: हैं
0: बताओ, स्पष्ट प्रसारण मिलता है ना, तो श्रोताओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: जी। सर फिल्म का नाम है हीरो और गाने के बोले तू मेरा हीरो ही।
1: ठीक है प्रेम सिंह जी, सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो हिसार,
1: मैं जयवीर प्रजापति बोल रहा हूँ जी, गांव सांगा दर्जियम। किससे बात कर रहे हैं जी? वो
0: आप बात कर रहे हैं कुमार रोहित से। और जयवीर जी कैसे हैं?
1: बढ़िया जी, अपने और आकाशवाणी परिवार की छोड़ाओ।
0: बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे हैं आजकल?
1: कभी गर्मी हो जाए कभी काम तो कुछ नहीं कर रहे जी फिलहाल। हाँ
0: जयवीर जी, मौसम का मिजाज तो ऐसा ही है, बदलता रहता है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जनाब जी, सारंगा।
0: सारंगा फिल्म जी, गाना
1: हाँ,
0: बताइए
1: मुकेश और लता जी की आवाज में लागे तुम से लगन, साथी छूटे ना,
0: जी।
1: साथी
0: जयवीर
1: छूटे।
0: जी, आपको और आपके साथियों को हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो हिसार। इस पहले अंक से अब मैं विदा चाहूंगा। इजाजत दीजिए अपने दोस्त आनंद को, आपसे फिर मुलाकात होगी रविवार शाम 5 बजे।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
5: ओ, 870-001-4242।

0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। सुनिए प्रत्येक रविवार और वीरवार रात्रि 8 बजे। अपनी फरमाइशें भेजिए 09729253272 पर।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी हिसार पर हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। प्रस्तुति रही आनंद शर्मा की। ये आकाशवाणी हिसार है, FM बैंड 102.3 MHz पर। हम अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर रुख करेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के लिए। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स

0: की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की ये दूसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रथम सभा के अंतर्गत 5:53 पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।